नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के

0: स्लीपिंग टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: ये है विविध भारती।

पहले चिंतन। आज अटल बिहारी वाजपेयी की याद का दिन है। उनके अनुसार हम देश के लिए जीना सीखते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये था चिंतन। और अब सुनिए कार्यक्रम वंदनवार।

वंदनवार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का 282वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। आप सुनेंगे कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, इसका भाग 16 प्रस्तुत होगा। प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। सुबह 7 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले पिछले गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय सुबह 8:15 और दिन में 2:00। आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर।

आज के फनकार ये कार्यक्रम सुबह 9:30 पर प्रसारित होगा। आज ये कार्यक्रम पार्श्व गायिका हेमलता पर केंद्रित है। प्रस्तुतकर्ता हैं रमेश गोखले। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में ये कार्यक्रम आज राखी पर केंद्रित होगा। समय रात्रि 9:30। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम होगा। आप सुनेंगे कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का भाग 2। संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबर खान। विविधा का प्रसारण समय दिन में 11:00। इसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती के अंतर्गत गीतकार गुलजार साहब के बारे में बातचीत। प्रस्तुतकर्ता है तेजश्री कांबले। दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 आप सुनते हैं सुरीला सफर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आप सुनेंगे दोपहर 3:00। दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में आज सुनिएगा नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मौलियार के लिखे नाटक की हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है ये। रूपांतरकार और निर्देशक विनोद रस्तोगी। उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम दोपहर बाद 4:00 प्रसारित होगा। नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1 है ये। संपादन सहयोग योगिता जाधव, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। संध्या 5:00 छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन संध्या 6:35 पर और संध्या 7:00 विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत महावीर चक्र एयर वॉइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर पर एक कार्यक्रम केंद्रित होगा। संपादन और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। संध्या 7:45 पर कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष साज और आवाज। हवा महल में रात्रि 8:00 हास्य नाटिका प्रसारित होगी कंगन। लेखक ब्रिजमोहन, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। रात्रि 9:00 सुनिएगा आपके लिए 9:30 पर आज के

फनकार और छाया गीत रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11 बजे विविधा का पुनः प्रसारण।

झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, आज भाग 282।

अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं, जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए एक माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्रीराम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है, जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के दसों सिर मुड़े हुए, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे पर सवार है।

0: ये था श्री रामचरित मानस गान का भाग 282।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार, ये श्रृंखला वर्षा चौमासा, वर्षा काल में वर्षा ऋतु में वर्षा से संबंधित, बरसात से संबंधित जो बंदिशें गाई जाती हैं, उनमें से कुछ बंदिशें शुभा जी ने हमें सुनाई, रागों के बारे में चर्चा की। इसी का एक पक्ष और भी है कि इस वर्षा काल में बहुत से त्योहार आते हैं, व्रत त्योहार, जिसे हम कहते हैं कि तीज त्योहार। तो तीज के बारे में तो बातचीत हो गई, लेकिन और भी कई त्योहार हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। शुभा जी, कृष्ण जन्माष्टमी का जिक्र हमने पहले किया
1: जी
0: था,
1: जी हाँ।
0: और नागपंचमी भी होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और रक्षाबंधन भी तो होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो क्या इन सभी त्योहारों को लेके अवश्य ही पद होंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: कृष्ण मंदिरों में तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसके काफी पद मिलते हैं, और एक प्रस्तुत करना चाहूंगी मैं, बल्कि उन मंदिर के साहित्य में तो पद के साथ साथ ये भी मिलता है कि किस राग में उसे गाना उचित होगा। तो सारंग में ये इस चीज को गाने का प्रयास है, और यही उन्होंने वैसे निर्धारित भी किया है। तो बोल इस प्रकार है, राखी राखो सुंदर कर वर, सुंदर कर पे हाथ पे राखी रखिए, राखी राखो सुंदर कर वर, तिथि पुण्यो शुभ दिवस, शुभ दिवस तिथि पुण्यो शुभ दिवस सलूनियो झूलो मुदित परस्पर। देखो प्रिया अलौकिक भूषण में गुथियो देके मुक्ता लर, मतलब
0: मुक्ता की लड़ी जो मोतियों की लड़ी है,
1: लड़ी उन्होंने गुथी है राखी में। श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, और वो सुंदर श्याम भी और गौर भी, राधा जी गोरी और श्री कृष्ण श्याम, श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, लटकत रुचिर पाठ के फुंदना कमल नाल मनु मधुप लगेगर, झूलन माही विलोलत ज्यो ज्यो देखी हसत दोऊ हर हर, लय हो झगर झगर इत उतते रहस बधाई मृदु मुसकन तर, वृंदावन हित रूप बल गई रमकन लाग्यो शोभा झर। ऐसा रक्षाबंधन का पद मिलता है।
0: इसमें भी ये राधा और कृष्ण झूल रहे हैं।
1: हाँ।
0: तो कहा जाए तो ये झूला ही है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन की बात आई है,
1: विशेष उल्लेख है रक्षाबंधन का, और कैसी राखी बनी है वो भी
0: जी। और ये भी मैंने सुना कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों ही के हाथों में राखी है बंधी हुई
1: जी।
0: तो जो राखी प्रतीक हम कहते हैं कि भाई को पहनाती है, बांधती है बहन, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को भाईचारे के लिए एक
1: वो भी है। और वैसे कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे

0: भाई के साथ साथ भाभी को भी लूम्बा नाम की एक एक ऐसी बड़ी सुंदर सी एक लटकन सी होती है, वो उनकी उनके कंगन में या चूड़ी में बांधी जाती है, ऐसी भी प्रथा होती है उसे कुछ लोग लूम्बा कहते हैं, कुछ और नाम से भी कहा जाता है, लेकिन भाभी को भी उनके सम्मान के लिए अगर भाई को राखी बांध रहे हैं तो लूम्बा भाभी को भी बांधा जाता है
1: जी। तो इसी तरह से ये राधा जी और कृष्ण मुरारी इनके हाथों में राखी बनती है। सुनाइए ना पद।

0: शुभा जी, ये रक्षाबंधन का तो पद, ये रचना हमने सुनी, लेकिन मूलतः कृष्ण जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक तो ये सब
1: बिल्कुल।
0: तो जन्माष्टमी का भी बड़ा महत्व इस वर्षा काल में होता है, क्योंकि उसी समय में कृष्ण जी का जन्म हुआ
1: जी। लेकिन आपको एक बधाई का पद सुनाना चाहती हूँ मैं। आज बधाई मंगल गावत, जायो जसुमति लाल मनोहर, सुनी सुनी सब सच पावत। अब इसमें देखिए कि कितने कितने प्रकार के साज बज रहे हैं। ताल मृदंग दमामे गोमुख, भेरी ढोल बजावत, आनंद

हर्ष्यो, सब ब्रज हर्ष्यो, जहां तहां ते धावत। दौड़ दौड़ के आ रहे हैं लोग, सब बाजे गाजे बज रहे हैं। हाथन भेंट ललित गति कामिनी, नंद सदन में आवत। निरख निरख मोहन सोहन मुख, फूलत नयन सिरावत। आंगन नाचत गोप छबीले, अद्भुत रंग बढ़ावत। लय लय छिरकत दूध दही घृत, हरदी कीच मचावत। तो सब चीजें जो है जो चढ़ रही हैं उनसे तो कीचड़ हो गया पूरा, इतनी इतना दूध दही हल्दी इत्यादि डाला गया। रोरी तिलक दुकूल सुभूषण, नंद सबन पहरावत। और जो आते हैं बधाई देने के लिए उनको खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं नंद राय, तो वो भी उनका सम्मान करने के लिए रोली का तिलक करते हैं, उनको भूषण आदि देते हैं। जस गावन को हित दामोदर, दास बधाई पावत। वाह।

0: कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रही थी प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक की थी, तबले पर संगत अनीश प्रधान की, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहायिका विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: श्रोता मित्र, इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में अभी आपने हमारी श्रृंखला वर्षा चौमासा की 16वीं और आखिरी

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 7 बजे हैं। भूले बिस्तर गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था तूफान और दिया। कार्यक्रम का अगला गीत गीता दत्त की आवाज में हमने फिल्म श्रीमती 420 से लिया है। गीतकार जानेसार अख्तर और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

तुझको ये भी पता हस्ती बहारे कैसी है क्या ना चाहे तुझको ये भी पता हस्ती बहारे कैसी है क्या खुद मुस्कुराए जा सबको हंसाए जा खुद मुस्कुराए

और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है पटरानी।

कार्यक्रम का अगला दीप फिल्म का नाम है जलदीप। युगल स्वर सुधा मल्होत्रा और स्नेहल भाटकर के इस गीत को कैफ इरफानी ने लिखा है और धुन बनाई है स्नेहल भाटकर ने।

एहसान सहारों का मत ले, एहसान सहारों का मत ले, खुद अपने मन को दीप बना, खुद अपने मन को दीप बना, तू रस्ते

फिल्म जलदीप का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म रामी धोबन का गीत अभी आप सुन रहे थे। गाने वाले कलाकार गीता रॉय और हेमंत कुमार थे। इसे राम मूर्ति ने लिखा था और धुन बनाई थी हिरेन बोस ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम फूल बने अंगारे। शब्दकार आनंद पक्षी हैं और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी।

और आइए अब सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म नगमा का गीत। गीत को जे नक्शाब ने लिखा है और धुन नाशाद की है।

0: शमशाद बेगम को अभी आपने सुना फिल्म नगमा में।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें। अब कहां
2: जाएं हम? फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा।
0: और अब आज का भूली बिसरी गीत कार्यक्रम संपन्न।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज पार्श्व गायिका हेमलता का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में आज उन्हीं के गाए कुछ गीत।

ये है यशुदास और हेमलता की आवाज में फिल्म गोपाल कृष्ण का गीत, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

यशुदास और हेमलता को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था गोपाल कृष्ण। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम परख। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

फिल्म परख का दो गाना अभी आप सुन रहे थे, स्वर किशोर कुमार और हेमलता के थे। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं यशुदास और हेमलता को, फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाई। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

यशुदास और हेमलता को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था धोखेबाज। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, आवाजें मुकेश और हेमलता की, फिल्म का नाम विश्वास।

0: बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
3: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस

0: मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से

0: अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गांव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रेणी में आपका स्वागत है। भाई ये जमाना प्यार से ज्यादा पीआर का है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है लोगों से संपर्क करना। इन दिनों लोगों से संपर्क बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लोगों से संपर्क रखने का अर्थ किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना नहीं है, बल्कि संपर्क उन्हीं लोगों से बढ़ाया जाता है जो आगे काम आ सकें। ऐसे लोगों से न सिर्फ बातचीत करना और उनके आसपास बने रहने के मौके देखे जाते हैं, बल्कि कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती भी गांठी जाती है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी के लिए ये बड़े काम के जो होते हैं। हमें पता होता है कि ये साथ होंगे तो बहुत से काम बन सकते हैं।

0: आप अपने कामों के बारे में न बताएं तो कोई मानता ही नहीं कि आपने कुछ किया होगा। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, इसकी तर्ज पर अपना गुणगान करना भी इन दिनों फैशन में है।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

जो पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क में रह पाते हैं वो अलग लोग होते हैं। इसके लिए कई बार वो निश्चित रकम भी चुकाते हैं या दोस्ती में ही उनकी बात बन जाती है। ऐसे में उनकी तारीफ वही लोग करते हैं और इससे आगे बढ़ने के रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक नए किस्म का पीआर भी शुरू हुआ है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही करने लगे हैं। वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों या कामों का ढिंढोरा खुद ही पीटते हैं, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, भाई जमाना ही कुछ ऐसा है। इन दिनों जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, पूछ भी उसी की होती है। और अगर

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागी किसने है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं।
1: भले ही मतलब के लिए जनसंपर्क बढ़ाया जाए या अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने ही मुंह से अपना गुणगान किया जाए, ये सब केवल पहली बार के लिए आपको कहीं पहुंचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि किसी की योग्यता उसके व्यवहार और उसकी काबिलियत से ही साबित होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब दिखावे का पर्दा हटता है तो सामने आती है वास्तविकता। लोग उसी वास्तविकता को देखकर आपसे जुड़ते हैं। यहाँ ना कोई तारीफ काम आती है और ना ही कोई पीआर। काम आता है तो केवल आपका आचार विचार और व्यवहार। जब होता है अच्छा व्यवहार तो लोग आपकी पीठ पीछे भी करते हैं तारीफ। और यहाँ कोई पीआर काम नहीं करता, ये होता है उनका खालिस प्यार।

तो जहाँ जरूरी हो वहाँ तो जरूर करें प्यार, लेकिन सभी से कीजिए दिल से प्यार। इस संदेश के साथ अब दीजिए आज के त्रिवेणी से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, जहां सुरों की महफिल है और नई फिल्मों के संगीत का जादू है।

0: प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये था। नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, आवाज मोहित चौहान की थी और फिल्म का नाम था दिल तो बच्चा है जी।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
0: दोस्तों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद का दिन है और आप सभी जानते हैं कि अटल जी केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं थे बल्कि एक महान कवि, संवेदनशील व्यक्तित्व और राष्ट्र के सच्चे सेवक थे। उनके विचार, उनकी वाणी और देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा और आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कविता यहाँ हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये कविता बताने का अर्थ या आपके सामने रखने का अर्थ इतना ही है कि इस कविता में उन्होंने दृढ़ और भावपूर्ण अंदाज रखा है। उनकी कविता है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, जितने की धार बही चूहा ही पाहन को, टूटेगा पाहन जो ज्यादा हो साधन को, सुमन गाता नहीं छन छन कर जीवन को, रसदार में बहता बहता जाता हूँ गीत नया गाता हूँ, भुज बल कर डाले बाएं दाएं को घेरा, किस किस को रोकेगा ये अंधियारा मेरा, मैं निज प्रकाश में ही जलता जाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ।

0: सुनिधि चौहान और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था राजी। गीत रचना गुलजार साहब की और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द डर्टी पिक्चर, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुन रहे हैं। आवाज कमाल खान की, गीतकार रजत अरोड़ा और धुन विशाल शेखर की।

दोस्तों, आज मशहूर फिल्म निर्देशक डेविड धवन का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों ढेरों मुबारकबाद देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि डेविड धवन हिंदी फिल्मों के उस हुनरमंद निर्देशक का नाम है जिन्होंने हंसी को, कहानी और मनोरंजन को अपनी पहचान बना लिया। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखने की खूबसूरत यादें भी दी है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म पार्टनर का गीत। गाने वाले कलाकार वाजिद, लाभ जुनेजा और स्नेहा पंत, गीतकार हैं शब्बीर अहमद और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने। फिल्म का नाम पार्टनर।

0: ये था पार्टनर फिल्म का गाना, आवाजें वाजिद, लाभ और स्नेहा पंत की थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा
4: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
5: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
4: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
6: मैं अगले दिन आशुतोष वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
8: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं तनु वेट्स मनु इस फिल्म का गाना, आवाजें मोहित चौहान और उज्जैनी की, गीतकार राजशेखर, संगीतकार कृष्णा।

दोस्तों, आज जाने माने निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर का भी जन्मदिन है। विविध भारती परिवार उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता है। आप सभी जानते हैं कि महेश मांजरेकर, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सशक्त अभिनय किया, निर्देशन दिया और लेखन, यानी अभिनय, निर्देशन और लेखन तीनों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके किरदारों में गहराई है, अंदाज में बेबाकी है। उन्हें जन्मदिन पर हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनकी कला यूं ही पर्दे पर अपनी छाप छोड़ती रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संजू का गीत, आवाजें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, पुनीत शर्मा की रचना है और रोहन रोहन का संगीत है। ये महेश मांजरेकर की फिल्म है।

0: समझे हैं? हाँ
1: बढ़िया।
2: तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि इस फिल्म में यानी संजू में महेश मांजरेकर ने एक छोटा सा कैमियो किया था।
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
4: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
3: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरक्षा।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

जी तो दोस्तों, आज मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का भी जन्मदिन है और विविध भारती परिवार उन्हें भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला

इन्हें और विविध भारती परिवार उन्हें भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला फिल्मों की उन शानदार अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ सशक्त अभिनय की मिसाल कायम की है। उनकी फिल्म बॉम्बे हो, खामोशी हो, दिल से हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। और उनकी आंखों में जो भावनाएं आती हैं, अभिनय में एक खास सहजता और उनकी जो हंसी है वो आज भी हमारे दिल में बैठी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और यादगार पहचान है और हम सभी आज भी उनके अभिनय के मुरीद हैं। आइए सुनते हैं फिल्म कंपनी का गाना, आवाजें आशा भोंसले, सपना अवस्थी और सुदेश भोंसले की। नितिन रेकवार के बोल हैं, संदीप चौटा का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

ये आवाज़ें संगीत हल्दीपुर और रोशनी बैप्टिस्ट की फिल्म का नाम है मर्डर टू, सईद कादरी के बोल और संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर का संगीत।

दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मशहूर अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार के सभी लोग उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और रोमांटिक किरदारों से लेकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं तक उन्होंने हर अंदाज को बखूबी निभाया है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म कॉकटेल का गीत, आवाजें नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, गीतकार इरशाद का।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने

0: आग को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा, आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है बस, वो तब जाके ये आ, आ, आ होता है। और एक दिन मैं ये आ, आ, आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस गीत में दो प्रमुख आवाजें हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक केजे येसुदास की और दूसरा शास्त्रीय स्वर था हेमलता का। हेमलता को इस गीत के लिए 1977 का फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड दिया गया था। हेमलता 70 के दशक की प्रमुख पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। जहां तक इनके अवार्ड से संबंधित बात चल रही है तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए इन्हें 1977 से 1981 के बीच 5 बार नामांकित किया गया था।

पार्श्वगायिका का हेमलता का जन्म हैदराबाद में मारवाड़ी भट्ट परिवार में हुआ। बचपन इनका कोलकाता में बीता। पंडित जयचंद भट्ट और अंबिका भट्ट के यहाँ 16 अगस्त 1954 को आपका जन्म हुआ। आप शास्त्रीय संगीत से आरंभ से ही जुड़ी रही हैं। हेमलता का मूल नाम लता भट्ट है। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। एक मील का पत्थर जिस गीत को हम कह सकते हैं, जिसने हेमलता को लाइमलाइट में लाया, उस गीत को सुनते हैं।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों पर हमने कई गीत सुने हैं जो हेमलता ने गाए हैं, और इन गीतों से ही हेमलता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

बात 1978 की है। इस साल अखियों के झरोखों से इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग नंबर 1 पर था। इस गीत को चाहने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। यूं तो हेमलता ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश, सुरेश वाडकर, जसपाल सिंह जैसे गायकों और आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, चंद्राणी मुखर्जी, उषा मंगेशकर जैसी गायिकाओं के साथ कई गाने गाए हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हेमलता ने केजे येसुदास के साथ कई लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए हैं।

सन 1990 के दशक में दूरदर्शन ने हेमलता और येसुदास को अपने श्रोता दर्शकों के लिए गाने का आमंत्रण दिया, जिसे हेमलता और येसुदास ने गाया। तिस्सा नदी सी और एक गाना था, साथ जो तेरा यूं पाया। ये दोनों ही गाने दूरदर्शन पर दिखाए जाते रहे और काफी लोकप्रिय भी हुए। आइए अब आपको हेमलता की मधुर आवाज में सुनवाते हैं सुनैना फिल्म का ये गाना।

रविंद्र जैन के अलावा भी हेमलता के मधुर कंठ का अपने गानों में अधिकतम उपयोग किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना ने। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया आप तो ऐसे न थे इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के निर्देशन में हेमलता ने कई गीत गाए हैं, जैसे जीने की राह, आप आए बहार आई, काली घटा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, राजपूत और सच्चाई की ताकत जैसी फिल्में। लेकिन हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, ये दो आवाजों का एक अद्भुत मिलन है। स्वर है लता मंगेशकर और हेमलता का।

अब आइए बात करते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में हेमलता के गाए गीतों की। विश्वास, रुस्तम, राजमहल, मुकद्दर का सिकंदर, ज्वालामुखी और बॉम्बे 405 माइल्स जैसी फिल्में। आइए मुकेश के साथ हेमलता के गाए हैं इस गीत को सुनते हैं।

फिल्मी गीतों के अलावा भजन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हेमलता का गहरा जुड़ाव है। आपने कई टीवी सीरियल्स के लिए भी गाया। आपके विषय में ये जानकारी बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने भारत की 14 बोलियों के लोक गीतों के विषय में मौलिक रचनात्मक अभिनव शोध भी किया है। आइए अब इस कर्णप्रिय स्वर में सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये गाना।

आइए अब हेमलता की गायकी की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। हेमलता का पारिवारिक माहौल शास्त्रीय संगीत का था। इनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, पर परंपरागत रूप से इनके यहाँ लड़कियों को संगीत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। पर बचपन से ही इनका रुझान संगीत की ओर था। जहाँ कहीं मौका मिलता वहाँ वे लुक छिप कर गा लेती थी। स्कूल में गाया, दुर्गा पूजा में गाया। एक बार कोलकाता में एक बड़ा संगीत का आयोजन था जिसमें लगभग सभी बड़े गायकों की शिरकत होनी थी, जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार। ऐसे जलसों में इंटरवल न देकर स्थानीय प्रतिभाओं से फिलर के रूप में गायकी की जाती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। एक गाने की पेशकश थी, पर श्रोताओं को बेबी लता की गायकी खूब पसंद आई और इन्होंने भी जमकर गाया। उम्र तो छोटी ही थी पर प्रतिभा बड़ी। पिताजी को भी खूब पसंद आया इनका यह गाना, जो कभी इस बात के पक्षधर थे ही नहीं कि लड़कियों को गाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बेबी लता को तो फिल्मों में गाना चाहिए, पर पिताजी माने नहीं। उन्होंने कहा फिल्म नहीं, अभी इसे आता ही क्या है, शास्त्रीय संगीत सीखे। और इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्रकाश घोष जी के यहाँ हेमलता को संगीत सीखने के लिए भेजा। रियाज किया और हेमलता संगीत सीखने लगी, रियाज करने लगी। लेकिन फिल्मों में गाने का क्रेज तो था ही, और वैसे भी पिताश्री के जो साथी कलाकार थे वो मुंबई में ही थे, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान। इनसे उन्होंने कहा कि मिलना भी हो जाएगा। और उनकी बहन जो है कमला पंडित, वो भी वहां रहती थी, और उनका ये मानना था कि 15-20 दिन का मुकाम करेंगे, इस बीच में जो है इस बच्ची की गलतफहमी कम हो जाएगी। 15-20 दिन में ही इन्हें वहां बुलावा आ गया, और ऐसे ऐसे संगीतकारों का नाम था उसमें जिन्हें हम सभी लीजेंड्स कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पहला ऑफर आया था वो उषा खन्ना और कल्याण जी आनंद जी का था, और

कल्याण जी आनंद जी ने विश्वास फिल्म के ले चल मेरे जीवन साथी इस फिल्म के लिए गवाया। लोक गीतों की ताजगी, भक्ति गीतों की सुगंध को लिए हेमलता ने कई गीत गाए। कहना ना होगा कि इनके स्वर में लोक और भक्ति गीतों को सुनना एक अलग ही अनुभव है। कई गीतों और भावों को हेमलता के स्वर ने जीवंत किया है।

फिल्म संगीत के संसार में कई तारे हैं जो अपनी कला से चमकते हैं। इस आकाश के अस्तित्व तक इनकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। ऐसी ही एक कलाकार हेमलता ने अपनी आवाज और गायकी से आसमान को संगीतमय ढंग से रोशन किया।

0: आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायिका हेमलता पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए।

0: आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
1: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
0: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
3: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
2: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
2: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्टर्स को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
3: बिल्कुल।
2: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाया, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
3: बोमन ईरानी
2: को,
3: डैनी डेंजोंग
2: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
3: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
2: बहुत प्यारी फिल्म,
3: बहुत प्यारी फिल्म है। नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे, एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
2: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है,
3: खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
2: वो सूरज उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहा है, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग। हाँ, हाँ। केटिको का मतलब होता है लड़की।
2: अच्छा।
3: हाँ, नेपाली शब्द लड़की जी, जी। तो फिर वो गाना किया और पता चला कि ओ, डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
2: जी, वही।
3: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो इतने ग्रेसफुल डांसर साबित कर चुके अपने आप को, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे। फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है।
2: अच्छा।
3: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
2: हाँ।
3: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया।
2: हाँ, इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
3: इम्प्रोवाइजेशन, अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन दिग्गज कलाकारों को।
2: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
3: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ, अनुपम खेर जी, केटिको।
2: तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें भी उस मजे को, उस मजे वाली जिंदगी को जीना है।
3: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले जाऊंगी।
2: जी जी, चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटिको, और केटिको का मतलब होता है लड़की।
3: बिल्कुल, पहाड़ी लड़की।
2: बहुत बढ़िया, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुर जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: तो मैंने कहा याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है, और रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो।
0: हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी,
1: अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वगैरह। तो अरे अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे।
0: गुड्डी से मास्टर जी।
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर, अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ, जब मैं लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
0: पूरा लड़का बन जाती
1: पूरा लड़का
0: हूँ।
1: बन जाती हूँ। मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई, सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे मैं सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ तुमने इतना बढ़िया किया मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा।
0: जी,
1: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
0: ये बड़प्पन है।
1: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। आप बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था। उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे, सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया,
0: जी
1: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
0: नहीं, वो
1: दिन
0: परंपरा है
1: हाँ
0: गुरु को गुरु बनाने
1: हाँ
0: की।
1: और वो
0: जी
1: मुझे मास्टर जी कहते थे। तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा,
0: अच्छा,
1: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई, और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहां तक पहुंच जाती है।
0: क्या बात,
1: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
0: वो
1: होती है।
0: चीज
1: मैं
0: आपकी
1: ये
0: आंखों में अभी भी दिख रही
1: हाँ
0: है।
1: कि
0: जी
1: मैं बहुत खुश हो गई, ये

0: अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी,
1: हाँ उनका तो जानना है।
0: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो इतने कमाल के एक्टर है
1: जी
0: और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं एक ही
1: पल
0: फ्रेम में,
1: में। हाँ
0: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सेट मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुए, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है। और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे, और पूरा सेट उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं,
1: जी
0: हाँ सेट में आ
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी
0: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं
0: वहीं
1: रहते
0: रहते थे, मतलब कि
1: थे।
0: 500
1: मजा
0: लोग वहीं
1: आता
0: खड़े हैं,
1: था।
0: 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं,
1: जी
0: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे, वो
1: हाँ
0: ताली भी बजा रहे।
1: हाँ
0: और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60-70 के
1: हाँ
0: डांसर्स भी थे, और
1: हाँ
0: वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो
1: जी
0: एक अलग माहौल था उस सेट पे।
1: जी जी
0: और उसके बाद डेनी सर,
1: हाँ उनका भी जानना है। वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
0: वो
1: है,
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे
1: करें।
0: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता, तुमने करना है मेरे साथ।
1: हाँ,
0: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते
1: करते थे
0: रहते थे।
1: और वो कॉपी करते
0: और
1: थे।
0: बोमन ईरानी भी इतने बड़े कलाकार है, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे, उनका एक पोशन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा, और फिर उनको किटी को ये दोनों इनको बोलते हैं,
1: हाँ
0: और ये लड़की की तरह अदायगी
1: हाँ
0: दिखाते, और
1: इधर
0: फिर मैं
1: आते
0: उनको
1: हैं
0: करके
1: जी।
0: दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
1: फिर भी हम
0: बहुत
1: कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बरजातिया जी है,
1: सॉफ्टली बोलने
0: बहुत ही
1: वाले
0: सॉफ्ट, और
1: जी।
0: वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है, वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना,
1: होगा ना
0: बहुत मजा
1: जी।
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा
1: होता।
0: नहीं होता कभी,
1: हाँ
0: वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
1: हाँ उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था। हम सब
0: या
1: भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं
0: तो
1: तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों नहीं
1: कर
0: कर
1: ही नहीं
0: सकते हैं?
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में। आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है। साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी। तो आप समझ गई हैं मैं
0: बिल्कुल
1: किसके
0: समझ
1: किस
0: गई,
1: विषय पे बात कर रही हूं। तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में, मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ,
1: जी
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
1: जी
0: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
1: जी
0: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
1: जी
0: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ,
1: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
0: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
1: अच्छा
0: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उन उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
1: जी
0: संजय लीला बंसाली थे, और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया।

0: आया, फिर मुझे भी मौका मिला
1: जी
0: एक स्केड्यूल करने का
1: जी।
0: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान।
1: ओके।
0: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था।
1: हाँ।
0: स्कूल में थे हम,
1: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे।
0: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख रहे थे
1: जी।
0: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए।
1: हम पैसे के लिए गए थे।
0: चलो वही मास्टर है जिन्होंने

0: तो वो मेरी
1: प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है जी।
0: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया।
1: तो वो खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
0: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी।
1: हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
0: जो मुझे मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है
1: जी।
0: वो भी बड़ा यंग ही थे बट वो बड़े ही सूदिंग पर्सनैलिटी थी। मेरे लिए उस वक्त कुछ भी सब कुछ नया था। कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था।
1: वही सीख रहे थे, वही कर रहे थे।
0: तो वो जब देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है। संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार।
1: हाँ।
0: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी बट काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं। सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
1: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे।
0: हाँ, और वो समझते थे कि वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: उनकी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
1: जी।
0: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी,
1: तो
0: मतलब
1: बताने तो
0: खामोशी
1: जाना
0: के
1: पड़ेगा।
0: बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल, तो तू सिखा, सनी देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा, तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ
1: रेपो बन
0: गया।
1: गया था
0: तो वो
1: इज्जत।
0: सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले, पहली दबंग मस्त मस्त दो नैन गाने किया
1: जी।
0: था वो बुलाया, उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जो क्या कर रही हो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग 3 सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया, सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी, फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो,
1: जी बिल्कुल
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
1: जी।
0: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे
1: हाँ,
0: बुलाने
1: डांस बहुत
0: लगे
1: ज्यादा था
0: बहुत ज्यादा,
1: उसमें।
0: रामगोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं,
1: जी
0: तो ये चलता रहा चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के सर देखिए मैंने ये काम किया है,
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजनी
0: अब
1: पड़ी।
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ, ये पहली बार हुआ था कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज टू डू ऑल्सो बिकॉज ही वॉज डूइंग इट, वो हिट वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था
0: ऑरा
1: उस
0: क्रिएट
1: चीज
0: हो
1: का।
0: गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा
1: कई
0: सीन
1: लोग
0: है,
1: रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी पे
1: बनाते
0: रील
1: हैं।
0: बनी, दब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई,
1: जी
0: मेरा करियर चल पड़ा, तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया, उन्होंने जो
1: वो
0: मेरे
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के
0: वो तो
1: कमर
0: गणेश
1: हिलाना
0: आचार्य जी
1: ये।
0: ने किया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने
1: अच्छा
0: मुझे दिया ये गाना
1: अच्छा
0: कि शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह।
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर।
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है, तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ लेके चल रहे हैं।

0: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
1: ही नोज
0: कुबत है, काबिलियत है,
1: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया। राधे में उन्होंने गाना दिया
0: जी।
1: उसके बाद
0: राधे का कौन सा गाना था आपका
1: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था, जैकलिन का और सलमान खान का?
0: हाँ, वो बहुत खूबसूरत
1: वो गाना मुझे दिया बुला के। तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आपके लिए आसानियां हो जाती है।
0: जी
1: बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान
0: हाँ।
1: खान की कोरियोग्राफर।
0: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से?
1: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे। नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है
0: जी।

श्रोता हमारे साथ है शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी है, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे, यानी एक स्थान पे, एक

0: आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो.
1: पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर, जब
0: हाँ
1: गदर रिलीज हुई थी 2020 से 21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय
0: जी
1: बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाती है की सारी
0: बहुत
1: फिल्में,
0: बड़े कोरियोग्राफर
1: बहुत
0: हैं
1: बड़े
0: जी.
1: कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी
1: हम
0: उनकी ही
1: साथ
0: है.
1: साथ हैं, मैंने प्यार किया,
0: हाँ
1: उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बढ़
0: एक
1: जाती है
0: विवाह
1: को,
0: ऐसा
1: एक
0: भी फिर
1: विवाह
0: आपके
1: ऐसा
0: पास
1: भी,
0: आया था जी.
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया।
0: जी
1: तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनकी बेटी की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे 2 गाने दिए थे।
0: अच्छा
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में,
0: अच्छा
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा
1: तो उन्हें लगा था 2-3 गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसा ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी,
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं
1: कुछ
0: दूंगी,
1: और
0: मैं
1: काम
0: सिर्फ
1: नहीं
0: इसी के लिए
1: करूंगी क्योंकि इस
0: डेडिकेटेड
1: फिल्म
0: हूँ
1: की
0: जी
1: डिमांड होनी चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी,
0: यार.
1: 22 साल बाद रिलीज हो रही है,
0: हाँ.
1: और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27-28 साल के होंगे, तो
0: जी
1: ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है ये.
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी
1: लेकिन
0: समय की है.
1: सब कुछ उसी समय का,
0: हाँ
1: लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने।
0: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा
1: हाँ,
0: था.
1: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
0: उम्र का भी अंतर आ
1: उम्र
0: गया.
1: का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते अलग करते अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करिए, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूं मेरी स्टेप, यहां पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए। अच्छा, जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है, उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का गड्डी लेके, वही स्टेप रखेंगे, उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, जो अनिल शर्मा जी के बेटे,
0: जी
1: उनको मैंने अलग स्टेप दिया,
0: हाँ
1: मैंने कहा
0: बिल्कुल.
1: कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला, क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना, और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें 2 गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे
0: जी
1: जो सबसे बड़े हिट हुए, एक
0: जी
1: गाना था चलते रे इश्क में,
0: चलते रे इश्क में बहुत
1: जो
0: पसंद किया यूथ ने.
1: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है, तो
0: हाँ
1: हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
0: बहुत
1: ना
0: खूबसूरत सेट था वो.
1: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है,
0: हाँ
1: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
0: जी
1: गाना,
0: बिल्कुल
1: इतना खूबसूरत।
0: बिल्कुल.
1: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
0: हाँ
1: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूं फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गंवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
0: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
1: करनी पड़ेगी
0: बिना
1: आपको,
0: मेहनत के.
1: आप हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते पीछे,
0: हाँ,
1: आपको
0: यानी कि
1: साबित करना
0: आपने
1: पड़ेगा।
0: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर 2 सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग हुए लोगों को भी आपने काम करवा लिया, यानी वो बुजुर्ग वह नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
1: दिग्गज
0: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर हैं।

0: कोहिनूर आपने काम करवा लिया, और उसके बाद क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है 70-60 से लेके 80-90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर 2 में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है,
1: मेरा पहला हीरो। मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं हीरो तो राजपाल यादव ही थे
0: जी,
1: तो मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
0: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है।
1: बिल्कुल।
0: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
1: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है
0: जी,
1: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को।
0: रुलाना आसान है,
1: हंसाना बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी, मैं वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको एक मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
0: अच्छा,
1: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है और वो बराबर टाइमिंग पे डांस करते हैं।
0: क्या बात है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया,
1: काफी काम किया
0: है ना, साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत के काम में?
1: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात करी हूँ 2012-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
0: जी,
1: तमन्ना, कार्ती, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
0: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
1: उसके
0: आते हैं।
1: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके एक्टर शुड टच द सेट एट
0: मतलब
1: 7।
0: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होकर बैठा होगा।
1: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप। बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लू, क्यों? ही सेड, अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7।
0: 7 means 7
1: पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया, नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं।
0: अच्छा,
1: तो और कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके देके निकल जाते हैं।
0: क्योंकि वो इतना क्विक है।
1: एब्सोल्युटली।
0: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इन्फोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल तेरे इश्क में खो जाते हैं।
0: क्या बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा गीत है, तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे कैसा लग रहा था, कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू तेरे कारण मुझे ये मिला है।
1: मेरी अम्मी, तो मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी,
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं, प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं, तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है, क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक कदम चली मैं थी, बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है, कुछ नहीं पता होता।

0: हमारी माएं होती है जो हमें,
1: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था.
0: एग्जैक्टली, हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो नहीं, ये हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे, उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे. बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसे दे. मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है. हम यही थे ना उस जनरेशन.
1: कई बार ऐसा होता था, पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है,
0: मम्मी बनना है या टीचर बनना है. हमारी हमारी टीचरें भी हमारी बहुत बड़ी, आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचरें हमारी पहली बात होती थी, टीचर रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर, हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था. तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे. तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया. मैं स्पीच रेडी करके गई, नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे ओके हाँ किया. कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत से. मैं मुंबई में हूं नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूं, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड.
1: क्या बात.
0: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पर नहीं. मैंने अपने भाई को फोन किया, ऐसे बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
1: पर लेके जाना,
0: बट लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए. मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ. वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो
1: जी.
0: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ. उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
1: जी
0: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की है. उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले.
1: अब अलमारियां भर चुकी हैं.
0: हाँ, काफी कुछ काफी कुछ. अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
1: जी
0: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते. लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड और जी सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के गाने भी अवार्ड में थे.
1: जी
0: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ.
1: क्या बात.
0: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल
1: हम
0: मिल जाए.
1: हम सबकी प्रार्थना है कि आपके हाथ में नेशनल अवार्ड आना
0: नेशनल
1: चाहिए,
0: अवार्ड
1: जिसने इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
0: बिल्कुल,
1: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए. तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी. तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
0: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है. उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
1: जी
0: पहली
1: बात
0: बात अपने आप में बहुत.
1: जी.
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से. जब हम
1: आपने
0: दोनों
1: बताया.
0: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को देख रहा है, एक लेवल अलग है. वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है.
1: जी.
0: उसकी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि
1: अच्छा.
0: उससे एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था.
1: ओह
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है. इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं.
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूं, हुरूर दबंग मुझे करना है और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है तो मैं क्या करूं. तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके.
1: करवा दें.
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला, वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था.
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना. और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए. और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म, यू शो इट टू प्रभु देवा, यू शो इट टू एवरीबडी.
1: ओके.
0: लड़कों ने बोला मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग. तब प्रभु सर जब आए और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: जब
1: डांस
0: प्रभु
1: कर रहे
0: देवा के साथ
1: हो.
0: सामने जब वो आए, बोले यू विल डू इट, वाई वाई वाई यू. सर एक बार देख लीजिए. फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ. प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे. फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे. हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना. तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ. मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ. अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है.

0: सेट पे
1: हाँ।
0: सलमान भाई आए तो सूरा गांव खड़ा
1: हाँ,
0: हुआ
1: वो
0: है
1: तो आए गई
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई। मैं तो गुड़िया को फिर हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया,
1: हाँ।
0: पूरा गांव शूट कर रहा था एंड दे ऑल क्लैप्ड एंड सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गेव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट। नाउ मुझे ही करना है शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ कर भी रही। अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन दूसरा दिन तीसरे दिन चौथे दिन
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे हैं मुझे देख रहे। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ जैसे ही सब हो गया लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा। सर नहीं मैम वी वॉन्ट टू दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है।
1: क्या बात।
0: एंड देन वो फोटो उतारे ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले आपका नाम दबंगनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए। अगर
1: शबीना बन गई दबंगनी।
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ।
0: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगनी शबीना खान दबंगनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी
1: जी
0: कि आपको नहीं पता जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है,
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में और
1: जी
0: नींद ना आए बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती हैं, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है। लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: सो बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं। ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा,
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी।
0: हाँ,
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूँ, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या
0: कुछ हो तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यहीं निकली,
1: यहीं पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा, तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सबर का दामन थामे रखो हमेशा, पेशेंस जिसे कहते हैं, सबर रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है। ये सारे चीजें यही कहती है कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सबर कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
0: थोड़ी एहतियात बरतें,
1: थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले लें, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ, बट रास्ते तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो, और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चेन अप प्रिंसेस, कीप योर चेन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता, आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है। आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो।
0: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही होती, और आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है शबीना जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको ऊपर रखो और उनको बचा के रखो,
1: बहुत जरूरी
0: ये
1: है।
0: बहुत

0: बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार जिसमें हमारे श्रोता, हम सब और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं, यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा रे ये बात और बता देनी थी, तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम साथ में बैठें और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है
0: जी।
1: यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए
0: जी।
1: और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच।
0: आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का विविधा कार्यक्रम बहुरंगी है। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा है, फिल्मों का रंग चढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज, लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे।
0: और स्मृति शेष में नमन गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था।
3: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकीजों में फिल्म रुकवाकर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात करता रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा, इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो संत एकनाथ के जीवन पर एक फिल्म बना रहे थे महात्मा। लेकिन अंग्रेज सरकार को ये बर्दाश्त न हुआ क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी से जुड़ रहा था। दबाव डाला गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा तभी इसे रिलीज करने दिया जाएगा, और तब जाकर ये फिल्म धर्मात्मा के नाम से रिलीज हुई। सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जन्मभूमि, ये भी आजादी की बात करती थी। सन 1938 में महबूब खान ने फिल्म बनाई वतन। इस फिल्म में भी संकेतों में आजादी की बात कही गई थी। सन 1940 में आई फिल्म बंधन। इस फिल्म में ये गाना आजादी की अलख जगा रहा था।
4: चल चल रे नौजवान,
5: चलो संग चले हम।
4: चल चल रे नौजवान,
5: चलो संग चले हम।
0: ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। सन 1941 में सोहराब मोदी ने बनाई

0: की आंखों का तारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा।
1: यहाँ मोहम्मद रफी पहली बार नौशाद के लिए गा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि सन 1944 में गुलाम हैदर ने फिल्म भाई में ये गाना बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इसे नसीम अख्तर और जीनत बेगम ने गाया था। बोल शातिर गजनवी के थे।
2: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई

सन 1946 में आई फिल्म हमजोली। इस फिल्म में नूरजहां ने गाना गाया ये देश हमारा प्यारा प्यारा। ये गाना अंजुम पीलीभीती ने लिखा था और संगीतकार थे हफीज खान।

ये साफ है कि सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि उनके गाने भी आजादी की बात कर रहे थे, देशभक्ति का जज्बा जगा रहे थे, देश के प्रति गौरव का एहसास करवा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुर्लभ गाने की। सन 1946 में एक फिल्म आई थी सोना चांदी। इस फिल्म में एक गाना था प्यारे बापूजी तिरंगे की ले लो कसम, इसे लता मंगेशकर ने गाया था। ध्यान रहे ये वो जमाना था जब लता मंगेशकर फिल्म संसार में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि न्यू थिएटर्स की बिमल रॉय निर्देशित फिल्म हमराही में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर लिखित जन गण मन को शामिल किया गया था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। सन 1947 में आई फिल्म एक कदम में तो पोस्टर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों की लंबी सूची है जो 1947 से पहले भारत में आजादी की अलख जगा रही थी। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल सन 1946 में 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर का था। बंगाल के अकाल पर बनी इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो देशभक्ति की लौ जगा रहे थे, जैसे ये गाना भूखा है बंगाल।

इसी दौर में आई देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं, जिसके निर्देशक थे पी एल संतोषी। इस फिल्म में एक जोशीला गाना था, हम जाग उठे हैं सोकर। इसे पी एल संतोषी ने खुद लिखा था, संगीत हुस्न लाल भगत राम का था।

सन 1948 में आई रमेश सहगल के निर्देशन वाली फिल्म शहीद। इस फिल्म में गुलाम हैदर का संगीत था। जरा सोचिए कि गुलाम भारत में कितना महत्वपूर्ण और साहस का काम था, आजादी पर फिल्म बनाना। इस गाने के गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। याद रहे, ये गाना आजादी से पहले रिलीज हुआ था।

0: हमने अब तक जिन फिल्मों का ब्यौरा आपको दिया ये तो सिर्फ एक झलक है। आजादी से पहले हिंदी या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में देश को जगाने और आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम जोर शोर से कर रहा था। कुछ साहसी फिल्मकार ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे ऐसी कहानियां पेश की। आजादी के बाद से अब तक तो ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां कही गई हैं, पर संपादकीय में हमारा फोकस उन फिल्मों पर था जिन्होंने 1947 से पहले हिंदी सिनेमा में आजादी की अलख जगाई। ये था संपादकीय और अब एक लघु फीचर फिल्म दीवार के 51 बरस। दीवार हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस तरह इसकी यात्रा के 51 बरस पूरे हुए। दीवार के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म तूफानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की लेखनी का कमाल थी। ये देखना दिलचस्प है कि दीवार से पहले यश चोपड़ा ने सन 1973 में फिल्म दाग के जरिए अपना बैनर शुरू किया था यशराज फिल्म्स। 1973 में ही प्रोड्यूसर गुलशन राय के लिए उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जोशीला, जिसमें देव आनंद ने काम किया था।
1: किसका रास्ता देखे।
0: गुलशन राय इससे पहले जोशीला और जॉनी मेरा नाम जैसी बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म यात्रा में ये फिल्म और भी मजेदार जगह खड़ी है। सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहलाए, पर इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आईं जैसे अभिमान, सौदागर, नमक हराम वगैरह। जंजीर के बाद दीवार ही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला रूप दोबारा नजर आता है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, एंटी हीरो वाला रास्ता, कड़क आवाज वाले संवाद, फ्लैट चेहरा, किरदार में छिपा गुस्सा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, विजय हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल किरदार बन गया।
3: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
4: हाँ, क्यों?
3: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई रवि की भूमिका में शशि कपूर थे। कैसे? अरे भाई, शशि कपूर तो अमिताभ बच्चन से बड़े थे और सीनियर भी। ये यश चोपड़ा का कन्विक्शन था कि शशि कपूर छोटे भाई की भूमिका में जमेंगे और यही हुआ।
4: इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो, अपने जुर्म, अपने काले पैसे।

0: अपने साथियों के नाम, मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए।
1: दीवार में मां की भूमिका में नजर आई निरूपा राय। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उन्होंने आगे कई फिल्में की और फिल्म इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वैसे फिल्म इतिहास में तो दीवार ने अपना नाम इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि इसे एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद,

0: बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट एम ए शेख।
1: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था, उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
0: इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस फिल्म का एक अंग्रेजी गाना खुद पंचम यानी आर डी बर्मन ने लिखा था और इसे उर्सुला वाज ने गाया था। दीवार में एक गाना ऐसा भी था जिसे फिल्म से हटा दिया गया था। मन्ना डे की आवाज वाला वो गाना था ये।

0: 51 साल बाद भी दीवार ऐसी फिल्म है जिसे आप कई बार देखने के बावजूद एक बार और देख सकते हैं। कल्ट फिल्में ऐसी ही होती हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: ये था लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा की एक रिकॉर्डिंग। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा के एक गुणी गीतकार, उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता। वो बावरा कैसे बने इसकी भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनवाएंगे। गुलशन बावरा 1955 में मुंबई आए और कल्याण जी वीरजी शाह ने उन्हें सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। आगे चलकर उनकी सबसे शानदार जोड़ी बनी पंचम यानी आरडी बर्मन के साथ। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में पेश है गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
3: मैं गुलशन बावरा हूं, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों के बाद ही बना। ये मेरा दिया हुआ तखल्लुस नहीं है, मैं तो गुलशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मैं सट्टा बाजार कर रहा था फिल्म, तो उसके दो गीत थे। एक गीत था चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, और एक गीत था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो इन दोनों गीतों में टस्सल चल रही थी। कल्याण जी भाई बोलते थे कि तुम्हें याद होगा अच्छा गीत है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर थे शांति भाई, वो बोलते थे नहीं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अच्छा गीत है। तो उन दोनों में डिस्कशन चल रही थी, तो इतनी देर में मैं पहुंच गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो कल्याण जी बोले, शांति भाई ये इन दोनों का राइटर है, और इसी से पूछ लो कौन सा गीत अच्छा है, क्योंकि तीसरा गीत मैं लिखने गया था आंकड़े का धंधा। तो वो बोले क्या झूठ बोल रहे हो कल्याण जी भाई, क्यों तुम मजाक उड़ाते हो, ये गीतकार तुम्हें कहां से लगता है, ये तो किसी हालत से गीतकार नहीं, ये तो बावला सा लगता है, ये कहां से गीत लिखेगा, और इसने ड्रेस भी कोई ऐसी पहनी हुई है, अभी तो इसकी मूंछें भी नहीं निकली हैं। मैं काफी छोटा था। तो इतनी देर में रविंदर दवे की एंट्री हुई, तो उन्होंने पूछा कि देखो कल्याण जी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस आदमी ने दोनों ये गीत लिखे हैं। तो शांति भाई ने बोला कि अगर ये दोनों गाने इसने लिखे हैं तो फिर मैं बैनर पे सिर्फ इसी का नाम दूंगा, मुझे ये बावरा सा लगता है, तो इसका नाम आज से मैं रखता हूं गुलशन बावरा, और तब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। देखिये मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव किया है तो क्वालिटी को किया है, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। मैंने 44 साल की अपने फिल्म कैरियर में मेरे आज तक 240 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और आप शायद आज के दिनों में गीतकारों को देखिए, एक गीतकार ने एक साल में 300 गाने उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, और मेरा 40 साल के, क्योंकि मैंने क्वालिटी में बिलीव किया है, इसीलिए मुझे उन 240 गानों में उतना रुतबा मिला है, लोगों को शायद 5000 गाने लिखने के बाद भी ना मिला है। देखिए जब मैं बचपन में ही थोड़े थोड़े भजन लिखने लग गया था, तो मुझे फीलिंग हुई थी कि मैं गीत लिखूंगा, और जब मैं कॉलेज में आया तो इश्क में टक्का होने लगा, तो फिर मैंने इश्किया गीत लिखने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद मुझे फिर पूरा यकीन होने लग गया कि नाउ आई एम फिट फॉर राइटिंग फॉर फिल्म्स। तो अब मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, और भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और उसने मुझे बॉम्बे में एक नौकरी दे दी। मुझे देश से सबसे ज्यादा इश्क है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर लोग सूरज की

पहली किरण से नहाकर प्रीत की पूजा करते हैं। ये मेरा देश महान है, ये संगीत का खजाना है देश। मुझे देश, इस देश से बहुत प्रेम है, इसलिए ये गाना मेरे दिल से निकला हुआ है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।

स्मृति शेष स्मृति शेष में आज सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका एस जानकी को। 11 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हिंदी फिल्मों के कदरदान एस जानकी को कुछ गिने चुने गानों से ही जानते थे। सन 1985 में आई थी अनिल कपूर और अमृता सिंह के अभिनय वाली फिल्म साहेब, जिसमें एस जानकी और बप्पी लहरी ने एक गाना गाया।

बस यही गाना हिंदी जगत में ज्यादातर एस जानकी की पहचान था। हालांकि उन्होंने इसी बरस यानी सन 1985 में फिल्म सुर संगम में ये भजन गाया था।

एस जानकी ने फिल्म मर्द के लिए ये गाना गाया। एस जानकी को उनके केवल हिंदी गानों से आंकना ठीक नहीं होगा, उन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता था। एस जानकी का पूरा नाम था सिस्तला जानकी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला में हुआ था। बचपन से ही जानकी को रेडियो सुनने का शौक लग गया था। वो लता मंगेशकर के गाने बड़े चाव से सुनती थीं। लता मंगेशकर उनकी प्रेरणा, उनकी आदर्श और गुरु रहीं। इसके बावजूद एस जानकी के गाने की शैली लता से एकदम अलग थी। जानकी का बचपन सिरसिला में बीता, जहां उनके एक रिश्तेदार थिएटर किया करते थे। इंटरवल में वो जानकी को लता मंगेशकर के गाने गाकर जनता को जोड़े रखने को कहते थे। ऐसे ही एक शो में तमिल फिल्मकार बी आर पंथलु और संगीतकार टी जी लिंगप्पा ने उन्हें सुना और चेन्नई आने को कहा। इस तरह सन 1957 में तमिल फिल्म विधियन विलायत्तू में उनका पहला गाना आया। पहले ही साल एस जानकी ने 6 भाषाओं में गाने गाए। इलैया राजा की पहली फिल्म अन्ना किली के लिए जानकी ने 3 गाने गाए थे। ये इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने जानकी को दक्षिण भारत की छोटी की गायिका बना दिया।

एस जानकी ने तकरीबन 6 दशक तक फिल्मों में गाने गाए और संगीतकारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया, जैसे टी चलपति राव, एम डी पार्थसारथी, जी रामानाथन, एम बी श्रीनिवासन, के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथन वगैरह। उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 भाषाओं में गीत गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, तुलु, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला गीत शामिल हैं। के विश्वनाथ की फिल्मों में इलैयाराजा के संगीत निर्देशन में उनके गाए गाने आज भी दक्षिण भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कन है।

हिंदी में एस जानकी के कुछ गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना। फिल्म आखिरी रास्ता का

एस जानकी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक मौजूद हैं जो उन्हें जानकी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।

5 अगस्त को हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 बरस के थे। प्रदीप रावत ने मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया और वो खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत ने सबसे पहले सन 1988 में बी.आर. चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में काम किया था। यहां उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले तेलुगु फिल्म सई के जरिए कदम रखा था। तमिल सिनेमा में उनका सफर फिल्म गजनी से शुरू हुआ और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, वो डबल रोल था। जब गजनी का हिंदी रीमेक बना तो उन्होंने वही भूमिका निभाई, गजनी धर्मात्मा की खूंखार भूमिका। कन्नड़ में उन्होंने पैरोडी फिल्म में काम किया, मलयालम में चाइना टाउन, बांग्ला में हीरो 420 और भोजपुरी में क्रैक फाइटर। प्रदीप रावत की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी आमिर खान अभिनीत सरफरोश, जिसमें वो सुल्तान की भूमिका में थे। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म लगान में उन्होंने तेज गेंदबाज देवा सिंह सोधी का शानदार किरदार निभाया था। विनम्र नमन। स्मृति शेष। ये थी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई केंद्र में किया गया।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। आप जानते हैं कि हर महीने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती को हम विविधा के अंतर्गत आपको जरूर सुनाते हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस महीने 18 को गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन। गुलजार साहब अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, अपने प्रतीकों की वजह से बड़े विशिष्ट हैं। एक तरफ उन्हें एक बेहतरीन लेखक के तौर पर जाना जाना जरूरी है, जहां आती हैं उनकी कहानियां। दूसरी तरफ जहां आती हैं उनकी कहानियां, रावी पार जैसी बेमिसाल कहानी को हम भला कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं शायर गुलजार, जिन्होंने बेमिसाल नज़में लिखी और कुछ यादगार त्रिवेणियां भी लिखी। आप जानते होंगे कि त्रिवेणियां गुलजार की ऐसी कविताएं हैं जिनमें केवल 3 लाइनें होती हैं। उन्होंने त्रिवेणियों की जो प्रेरणा ली वो जापान के हाइकू से ली है, लेकिन त्रिवेणी की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा ही हैरत में डालती है। त्रिवेणी के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब ये फॉर्म बनाई थी तो पता नहीं था कि ये किस संगम तक पहुंचेगी। त्रिवेणी नाम इसलिए दिया था कि पहले 2 मिसरे गंगा जमुना की तरह मिलते हैं और एक ख्याल एक शेर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं के नीचे एक और नदी है सरस्वती, जो गुप्त है, नजर नहीं आती। त्रिवेणी का काम सरस्वती को दिखाना है। तीसरा मिसरा कहीं पहले 2 मिसरों में

0: घुमा हुआ है, छिपा हुआ है, गुप्त है। तो गुलजार की कुछ त्रिवेणियां, एक त्रिवेणी में गुलजार लिखते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। एक और त्रिवेणी, गोले बारूद आग बम नारे, गोले बारूद आग बम नारे, बाजी आतिश की शहर में गर्म है, बंद खोलो कि आज सब बंद है। एक और त्रिवेणी, रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, रात के पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। गुलजार साहब विविध भारती के स्टूडियो में कई बार आए हैं और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम उन्होंने पेश किया था बरसों पहले मास्टर राजू के साथ। जरा अपने खजाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगती है क्या। ये रही, तो चलिए इसे प्ले करते हैं।
1: फौजी भाइयों नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। पहली बार अकेले मिला था, इस बार मेरे साथ एक बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है जिसका नाम है मास्टर राजू। बहुत सी फिल्मों में उसे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में उससे मिले होंगे, लेकिन आज ये फखर मुझे हासिल है कि मैं इस बच्चे का आपसे परिचय करा रहा हूँ।
2: लेकिन अंकल, हमारी पहली फिल्म का भी तो नाम परिचय था।
1: जी हाँ, आपको याद है?
2: हाँ, मुझे उसका एक सीन और एक गाना याद है।
1: अच्छा, सीन कौन सा याद है आपको?
2: वो जब जितेंद्र अंकल नहा रहे होते हैं तो मैं उनके कमरे में लंगड़ा भूत बनकर जाता हूँ और कहता हूँ, अंदर कौन है, मैं लंगड़ा भूत हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगा।
1: अच्छा, आपको अभी तक याद है। हाँ। और गाना कौन सा?
2: वो जो हम सब लोग गाते हैं सारे के सारे।
1: हाँ, तो वो गाना आपने पहली बार स्क्रीन पर गाना गाया था ना?
2: जी हाँ।
1: तो वो गाना हम फौजी भाइयों को सुनाएं?
2: जी हाँ।
1: चलिए वो गाना सुनाते हैं।

ए संजू, ए बिजू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

0: राजू बेटा एक बात बताइए हमें, आप ये जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये आपने सीखी कहाँ से?
1: ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी बच्चों से भी सीखी, लेकिन अंकल एक 5 मिनट,
0: 5 मिनट?
1: मेरा मतलब 2 मिनट।
0: 2 मिनट में क्या करेंगे आप?
1: मैंने गलती हो गई मुझसे,
0: क्या?
1: मैंने फौजी भाइयों को नमस्ते करने भूल गया।
0: अरे रे रे रे, तो आप नमस्ते कर लीजिए,
1: फौजी
0: चलिए।
1: भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नमस्ते करना भूल गया, इसलिए मैं आपको अभी नमस्ते कहता हूँ।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखी, आप बता रहे थे हमें?
1: हाँ, ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी सीखी, बच्चों से भी सीखी।
0: बच्चों से कौन से?
1: बच्चों में मुझे एक फिल्म अच्छी लगी, वो आशीर्वाद।
0: अच्छा, उसमें तो बहुत से बच्चों के गाने भी थे,
1: जी हाँ,
0: कोई गाना आपको याद है?
1: वो दादा मुनि का जो गाना था।
0: दादा मुनि, फौजी भाई जानते होंगे हम, अशोक कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि कह के बुलाते हैं। तो दादा मुनि का कौन सा गाना आपको पसंद था?
1: वो जो तालेगांव मालेगांव वाला जो गाना था।
0: हाँ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो
1: हाँ
0: चलिए रेलगाड़ी पे चढ़े,
1: हाँ
0: चलिए
1: चलिए,
0: आइए।
2: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी या

में भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप भप। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

0: बस बस बस बस
1: अंकल स्टेशन आ गया।
0: चलिए उतरिए।
1: हाँ चलिए।
0: हाँ उतरिए आइए। चलिए अब कौन से गाने पे उतरेंगे?
1: अब
0: गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको। हाँ कौन सा सुनाएंगे आप? अच्छा ऐसी पिक्चर का गाना सुनाइए जिसमें आपने काम किया हो।
1: अच्छा वो गाना मैंने नहीं गाया तो चलेगा?
0: हाँ चलेगा, लेकिन किसने गाया बता दीजिए।
1: वो असरानी अंकल जो गाते बावर्ची में।
0: वो कौन सा गाना है?
1: वो नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
0: अच्छा चलिए। अच्छा ये तो आप अपने नमस्ते के साथ सुनाते तो बहुत अच्छा होता ना। चलिए सुनाते।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: आई है।
1: वाह बेटा,
0: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी,
1: नमस्ते।
0: जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी,
1: जय हिंद।
0: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
2: अंकल आपको मैथमेटिक्स आता है?
3: मैथमेटिक्स क्यों? एक मिनट जरा, मैं कुछ कुछ फौजी भाइयों को कुछ बताना, मैं भूल गया।
2: आप भी भूल करने लगे ना,
3: मेरे भूल हो गई, आपके बारे में कुछ बताना भूल गया।
2: हाँ, फिर चलेगा?
3: फौजी भाइयों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू वो आर्टिस्ट है जिसे इस साल हिंदुस्तान में नेशनल अवार्ड मिला है, बस ये बात बताना भूल गया था। आप क्या पूछ रहे थे?
2: मैं पूछ रहा था आपको मैथमेटिक्स आता है?
3: मैथमेटिक्स क्यों?
2: मेरे पास एक सवाल है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे?
3: क्या?
2: देखिए, एक बट्टा दो, हाँ, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
3: ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत पसंद है वो गाना, आप वो गाना सुनाना चाहते हैं हमें, है?
2: जी हाँ,
3: तो चलिए सुनाइए।
2: आप बहुत जल्दी समझ गए।

0: लगता है मैथमेटिक्स आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
1: नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आप तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े होगे।
0: नहीं मेरे, हम स्कूल ही नहीं गए, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे?
1: आपको हिस्ट्री पढ़ना है?
0: हाँ मुझे पढ़नी है। आप पढ़ाएंगे?
1: हाँ,
0: कैसे?
1: हम जागृति है ना, जो फिल्म थी उसका हम एक गाने की उंगली पकड़ लेते हैं और बस आप उससे ही हिस्ट्री समझ जाएंगे।
0: अच्छा, उससे आप हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे?
1: हाँ
0: चलिए पढ़ाइए, आप शुरू कीजिए।

0: अच्छा राजन, जरा आप अपनी एक्टिंग का नमूना तो दिखाइए फौजी भाइयों को।
1: लेकिन अंकल ये तो रेडियो है।
0: हाँ तो क्या है, रेडियो पे आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखा सकते? अरे आवाज तो उससे तो आप अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जैसे हमें सेट पे
1: लेकिन
0: दिखाया करते हैं, वो जो जोक सुनाया करते हैं
1: अच्छा कौन सा,
0: आप कोई भी जोक जो आपको पसंद हो।
1: अच्छा मैं आपका फेवरेट जोक कहूँ?
0: हाँ वही
1: हैं
0: सही।
1: देखिए
0: इस जोक में हम पहले बता दें फौजी भाइयों को कि पहला रोल लसरानी, दूसरा अर्शिदा अर्शिद सैन, और तीसरा,
1: किशोर मुखर्जी।
0: हाँ सुनाइए।
1: तो ये तीनों अंकल बैठे रहते हैं, तीनों जन अपना अपना बोलते कि मैं होशियार हूँ मैं होशियार हूँ। तो असरानी अंकल पहले कहते हैं कि मैं जंगल में गया, वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, सिर्फ हाँ सिर्फ सिर्फ एक ही। उस झाड़ के नीचे दो शेर बैठे हुए थे, हाँ सिर्फ दो शेर, और मेरी बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी। सिर्फ एक ही गोली।
0: फिर मारा
1: तो
0: कैसे?
1: उसके अंदर से उन्होंने कहा, मैंने

0: बुलेट मारी, एक को गोली मारी और एक को आंख मारी, दोनों मर गए।
1: अच्छा अच्छा दूसरे
0: फिर टर्न आई अशीत सेन अंकल की। अंकल ने कहा, अरे अरे अरे, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो। मैं जंगल में गया गया तो वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था। वो झाड़ के नीचे एक ही शेर बैठा था। और क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला था तो मैं बहुत जल्दी में निकला और मैं अपनी बंदूक लेने भूल गया। अब मेरे सामने शेर खड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने देखा, उनके पीछे की जेब में उनका लाइसेंस था, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया।
1: बंदूक का लाइसेंस।
0: जी हाँ, बंदूक का लाइसेंस दिखाया। तो उस शेर को दिखाते ही शेर मर गया।
1: अच्छा, इन्होंने तो लाइसेंस
0: तो
1: सही मार दिया।
0: जी हाँ, अब किस्टो अंकल की टर्न आई। उन्होंने कहा, अरे धीरा दो, घुस भी नहीं है, घुस भी नहीं है, मेरा सुन, मैं जंगल में घेरा, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे, जंगल मेरे पीछे, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे, जंगल मेरे पीछे, सेम,
1: हाँ जी,
0: भागा भागा भागा, जंगल मेरे आगे, मैं जंगल के पीछे, वो जंगल के अंदर हेगी हेगी हेगी जारता, वो झाड़ के नीचे एक शेर शेर शेर बैठा था। शेर, वो शेर को मैंने बोला, हे शेर, तू जंगल का राजा है? तो बोला, हाँ हूँ। तेरी सब लोग सेवा करते, तेरी सब लोग सेवा करते? तो बोला, हाँ करते हैं। तो तू झेडी झेडी का को नहीं पहनता है, तू शर्म के मारे मर गया मर गया।
1: तीसरे को आपने शर्म से मार
0: जी
1: दिया।
0: हाँ,
1: सुनिए, आप मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं, उतने ही होशियार हैं जितने आप एक्टिंग में होशियार हैं। और आप सेट पे जो कुछ किया करते हैं, एक तो जोक सुनाते हैं,
0: जी हाँ,
1: उसके अलावा आप पहेलियां पूछा करते हैं हमसे।
0: जी हाँ,
1: अगर हमसे आप कुछ पहेलियां पूछें तो
0: जी
1: पूछेंगे
0: पूछो,
1: या मैं पूछूं आपसे?
0: जो भी कहें आप
1: चलिए, हम कुछ पहेलियां आपको सुनाते हैं,
0: पूछिए।
1: अगर अच्छे लगे तो उनके जवाब बताइएगा।
0: चलिए।
1: हाँ जी, चलिए।
2: मैं लाल लाल गुजकू, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं कौन हूँ?

0: बताओ नारियल।
1: अच्छा एक बात बताइए राजू बेटा, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
2: मैं जब छोटा था तो बहुत सारी फिल्में देखता था।
1: मतलब अब आप बड़े हो गए?
2: नहीं, मैं उस उम्र की बात करता हूँ, इस उम्र से भी छोटा था तब।
1: अच्छा।
2: तो मैं जब छोटा था तो बहुत सी फिल्म देखता था, लेकिन उसमें से मुझे एक फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, वो ब्रह्मचारी।

0: याद है।
1: उसके अंदर से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो गाना कभी रेडियो पर आता था ना, भले मैं खेलता था, लेसन करता था, कुछ भी करता था ना, और अगर वो गाना रेडियो पर आया, बस मैं नाचने लग जाता था।
0: अच्छा, शमी अंकल की तरह है ना। अच्छा, अगर वो गाना मैं अब भी लगाऊं तो आप नाचेंगे?
1: हाँ नाचूंगा तो सही, लेकिन फायदा नहीं है,
0: क्यों?
1: कोई देखने वाला तो नहीं।
0: अरे फौजी भाई भी देखना, खुशी से नाचने लगेंगे। मैं लगाता हूँ गाना, चलिए।

0: में इनके लंबी सितारी।
1: राजू बेटा एक बात जो हम भूल गए।
2: देखिए अंकल अब फिर से भूल करने लगे।
1: नहीं नहीं भूले मतलब उस तरह की भूल नहीं है, भूल ना जाए इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पिक्चर में आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस पिक्चर का कोई गाना तो सुनाइए।
2: अरे हाँ
1: आपको याद है कोई गाना उस पिक्चर का?
2: हाँ उसमें से एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो आज से पहले आज से ज्यादा।
1: आपको याद है गाना? याद है
2: हाँ।
1: तर्ज भी याद है?
2: हाँ और वैसे मैं आज खुश भी हूँ।
1: अच्छा तो चलिए सुनाइए मैं कैसे गाना।
2: आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से

0: राज बेटा अब आगे चले यहाँ से।
1: लेकिन अंकल
0: जी
1: आपने एक भूल की।
0: फिर मैंने की आपने की
1: नहीं की आपने। कह मैं रहा हूँ कि जिस फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम तो आपने बताना ही भूल गया।
0: आई एम सॉरी।
1: खैर मैं बता देता हूँ, उस फिल्म का नाम है चित चोर।
0: अच्छा उसके बाद एक और भूल से आप बच के रहिए कि वक्त हो रहा है हमें चलना है और फौजी

0: माइयों को नमस्ते कह के उनसे इजाजत लेनी।
1: नहीं अंकल, एक गाना।
0: और गाना कौन सा?
1: वो मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिए।
0: नहीं पर बता तो दीजिए।
1: नहीं, सस्पेंस।
0: अच्छा, गाना भी सस्पेंस वाला।
1: चलिए
0: चलिए सुनाइए।

0: ये थी मास्टर राजू और गुलजार साहब की एक संयुक्त प्रस्तुति जो बरसों पहले विविध भारती पर हुई और अपने संग्रहालय से हमने निकाल कर इसे आपके लिए पेश किया। विविधा कार्यक्रम में आज हमने दो विशेष प्रस्तुतियां आपकी नजर की, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक और इसके साथ ही गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। आज का विविधा कार्यक्रम इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। अब यूनुस खान को दें इजाजत। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर सुनिए विविधा।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश

0: कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: नदिया के पार फिल्म में आपने सुना ये आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता और साथियों की थी। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके

0: महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
6: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव कर

0: करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है
1: जी,
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
2: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

विभिन्नता के गाए गीत आज आप सुन रहे हैं यादों की महफिल में।

0: ये चौपाइयाँ आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुल्हन वही, जो पियामन भाई, हेमलता और साथियों की आवाज़ें थी, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अखियों के झरोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए हेमलता के गाए चंद नगमे। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंद

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओ, आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने फेसबुक पर जो आज हमने इबारत पोस्ट की है उसे पढ़ा है और उस हिसाब से अपने गीतों के जो उनके सिलेक्शन हैं उसको भी बताया है हमें। वैसे आज जो बातें हमने की हैं उसके मातहत बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद के नगमे हमें भेजे हैं। सावन का जो ये उजाला होता है श्रोताओं, यानी दिन की अगर बात करें तो जितना खूबसूरत होता है रातें भी उतनी ही मनभावन होती हैं, जो दिन की भागदौड़ से दूर थकन के एहसास को दूर भगाती हैं, अपने आगोश में हमें ले लेती हैं। कभी गीत कभी गजल सुकून देते हैं ऐसी रातों में, कभी चांद सितारे हमसे बातें करते हैं, फूलों कलियों की खुशबू के साथ साथ भीगे सावन की रातों में कुछ खास यादें आपके मन में दस्तक देती होंगी। बरसात की कोई यादगार रात, जब जिंदगी के किसी सफर में कोई अजनबी बना आपका हम सफर और आपकी यादों में हमेशा के लिए बस गया रजनीगंधा के फूलों की महक की तरह। आज सुरीला सफर कार्यक्रम में सावन की बरसती रातें, कुछ गीत कुछ यादें हैं हमारी हम सफर। और अब आपसे बता दें जो

इबारत हमने पोस्ट की है, ये कुछ इस तरह से है। तुम्हें याद है वो बारिशों की रात, जब सावन की गीत की तरह समा सुहाना था। एक राह के हम दो अजनबी थे, हवाओं ने जब आपके रुख से पर्दा हटाया तो लगा जैसे बैरागी भंवरा नरगिस के फूलों के दामन में आधी रात कोई कविता सुनाता हो और कहता हो तेरा मेरा प्यार नया है। आज याद आई वही बरसात की रात, जब जिंदगी में जीने की तमन्ना जाग उठी थी। एक अनदेखी निगाह से दिल ने कहा था ऐसे तो न देखो। उस रात बादलों में कयामत के काजल थे, हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे। शायद प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, छतरी तानी और दोनों साथ चल दिए। दिल ने सच ही तो कहा था कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं और खोजिए उन शब्दों को जो हैं आज की इबारत में शामिल। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म अनजाना के ये कौन से दो कलाकार हैं श्रोताओ, जो भीगना तो चाहते हैं लेकिन भीगने से बच रहे हैं। उनके नाम आपको बताने हैं। और ऐसी बारिशों में क्या कोई कभी ऐसा दिखा आपको जो बिना छतरी के भीग रहा था और आपने अपनी छतरी के सहारे उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश से जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो प्रकृति के श्रृंगार और मानव मन के अंतर द्वंद और प्रिय से मिलन का मनोहारी रूप का गाढ़ा चित्रण है। सावन में बारिश की रात में हवा से चेहरे के पर्दे का हटना प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ये संयोग चमत्कार है जो सत्य सौंदर्य और प्रेम के प्रकटीकरण का रूप लिए है। दो अजनबी का मिलना क्षण भंगुरता में शाश्वतता का अमर और अनंत प्रतीक होने के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस के अंकुरित होने का एहसास दे रहा है। रिमझिम रिमझिम बारिश और सुहाना मौसम प्रेम भाव को जगाने वाला मुख्य उद्दीपन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनजान अजनबी संग अनजाने में अनकही बातें और अनबूझी आशाओं आकांक्षाओं का आकलन करती इबारत है और आशिकों के आका बनी सावन की बरसती जो बूंदे हैं आकाश में से मानो बौछार कर रही हैं बूंदे और अपने आश्रित आशिकों को अनुरागी आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ एक शब्द हमारे कुछ श्रोताओं ने सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रात समा पर्दा प्यार तमन्ना देखो कयामत इकरार दामन, ये सारे शब्द हैं इसमें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे जमाना लाख करे सितम हाय कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे, और कुछ गीत इन्होंने भी सुझाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी तेरे दामन न छोड़ेंगे हम, प्यार हुआ इकरार हुआ और ए नरगिस मस्ताना, ये सारी गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की वरात शायद इसलिए याद रह गई क्योंकि उसमें मौसम से ज्यादा कुछ और भी बरसा था। दो अजनबी थे एक राह थी थोड़ी सी झिझक और कुछ अनकही बातें, फिर एक निगाह मिली और लगा जैसे दिल ने सब कह दिया। छतरी के नीचे साथ साथ चलते हुए शायद प्यार ने चुपके से दस्तक दी थी। कुछ पल इतने सादे होते हैं कि उम्र भर की खूबसूरत याद बन जाते हैं। तो यही याद हमने आपसे पूछी है श्रोताओं कि क्या कोई कभी ऐसा मिला जो बारिश में बिना छतरी के भीग रहा था और आपने उसे अपनी छतरी के सहारे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया। ये कौन से कलाकार हैं?

ये गीत क्या आपके दिल के करीब है श्रोताओं? ये दिल क्या आपको इस गीत को सुनने के लिए बार बार मजबूर करता है? जी हाँ, ये गीत अपने जमाने का बड़ा ही खूबसूरत नगमा बन पड़ा था श्रोताओं, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जुबान पर था। आपने इस फिल्म को क्या देखा है और क्या आप ये कलाकार जो गा रहे थे उन्हें पहचानते हैं? तो आप हमें लिख भेजें। और ये फिल्म क्या आपने देखी है? घर घर की कहानी फिल्म का ये गीत था, आवाज सदाबहार गायक किशोर कुमार की थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बरसात में तुमसे मिले हमसे मिले तुम की तरफ इशारा कर रही है। बरसात सिर्फ तन ही नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगोती है। बारिश अपने पूरे शबाब पर हो और किसी शेड के नीचे दो अजनबियों का बारिश रुकने तक धीरे धीरे संकोच छोड़कर बातों का सिलसिला शुरू करना, या किसी से मिले लिफ्ट के बाद पता चलना कि दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों ही परिस्थितियों में ये महसूस होता है कि हम दोनों अब अजनबी नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं। तब दिल इस बरसात को शुक्रिया स्वरूप कह उठता है। जुग जुग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओं कि वाकई हम किसी शेड के नीचे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये बारिश अब थम जाएगी, तब थम जाएगी, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई आपका साथी बना क्या जो आज तक आपको याद है? तो बारिश की ये रातें जिनके यादों को आज आप इस कार्यक्रम में ताजा कर सकते हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं में से एक श्रोता ने और लिखा है कि वो बारिशों की रात थी और सावन खिड़कियों पर कोई धीमा सा खत लिख रहा था। हम दो अजनबी थे एक ही राह पर, मगर जाने क्यों हवा बार बार तुम्हारा रुख मेरी तरफ मोड़ देती थी। बादलों के काजल में आधी रात डूबी थी और तुम्हारे चेहरे से जब हवा ने पर्दा हटाया लगा जैसे नरगिस के फूलों के बीच कोई भूली हुई कविता जाग गई हो। छतरी हाथ में थी और इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। वैसे जो सावन की रात होती है उसमें तमाम फूल भी होते हैं। नरगिस के फूल का हमने जिक्र किया है और आपको यादें तो ताज़ा करनी ही हैं। साथ ही नरगिस का जो फूल होता है, क्या आपने उसे देखा है? कितने रंग का होता है श्रोताओं, यह आपको बताना है। और नरगिस के फूल को और क्या कहते हैं, यानी और क्या नाम है?

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में, बस पकड़ा हमने तो खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज़्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती हैं कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफ़ेद रंग का होता है लेकिन इसकी किस्मों में नारंगी, क्रीम, गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डैफोडिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर रिमझिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गईं तो वीडियो करने लगी, बाद में कमल रूठा उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले। चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ। बप्पा, इन्होंने बप्पा को भी याद किया है यानी गणपति बप्पा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था, बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी, मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया, मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविद भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद हैं। जी हाँ, विविद भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। ये खूबसूरत हसीना कौन है?

वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओ, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, धरती भी झूमती है, गाती है बरखा रानी जरा जम के बरसो। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद

एक बार मेरी एक कलीग जिसे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी। वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोरावस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे। मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था। बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अलनीनो ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं। पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं। तो आप इंतजार करें, बारिश तो आएगी।

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोताओं, न सिर्फ हम सफर यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफर होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गज़ल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफ़र है, वो कौन सा हम सफ़र है श्रोताओ, जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रॉल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुँह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे नाम, उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और इंतज़ार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारी श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं। लिफ्ट में जब आप जाते हैं, कोई ऐसी रात जो आपको याद रह गई हो,

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं, और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखा कर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, बोली आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। यह हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम यही कहेंगे रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहली नजर का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है, और सावन महीने की हर बूंदें उसकी यादें ताजा करती हैं और भीगे हुए। और उन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं आगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम, जीवन में कई उमंग जो है जागती है, और ये खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओ हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन।

अरुण गोविल और जैना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था, आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज़ थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहाँ बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों के संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

नंदा और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में? श्रोता, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी, चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना यानी सुरमई यादों तरानों का नया कारवां और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे।

एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूं और वहां से प्रोग्राम सुन रही हूं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई उड़ने का डर रहता है।

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वाद्य बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में। जगह वृंदावन गए, वहां किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था। बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

सावन की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे थे। नींद हमारी ख्वाब, तुम्हारे इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

त्रिवेणी में आपका स्वागत है। भाई ये जमाना प्यार से ज्यादा पीआर का है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है लोगों से संपर्क करना। इन दिनों लोगों से संपर्क बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लोगों से संपर्क रखने का अर्थ किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना नहीं है, बल्कि संपर्क उन्हीं लोगों से बढ़ाया जाता है जो आगे काम आ सकें। ऐसे लोगों से न सिर्फ बातचीत करना और उनके आसपास बने रहने के मौके देखे जाते हैं, बल्कि कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती भी गांठी जाती है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी के लिए ये बड़े काम के जो होते हैं। हमें पता होता है कि ये साथ होंगे तो बहुत से काम बन सकते हैं।

0: जो पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क में रह पाते हैं वो अलग लोग होते हैं। इसके लिए कई बार वो निश्चित रकम भी चुकाते हैं या दोस्ती में ही उनकी बात बन जाती है। ऐसे में उनकी तारीफ वही लोग करते हैं और इससे आगे बढ़ने के रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक नए किस्म का PR भी शुरू हुआ है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही करने लगे हैं। वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों या कामों का ढिंढोरा खुद ही पीटते हैं, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, भाई जमाना ही कुछ ऐसा है। इन दिनों जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, पूछ भी उसी की होती है। और अगर आप अपने कामों के बारे में न बताएं, तो कोई मानता ही नहीं कि आपने कुछ किया होगा। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, इसकी तर्ज पर अपना गुणगान करना भी इन दिनों फैशन में है।
1: नहीं देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं।
1: भले ही मतलब के लिए जनसंपर्क बढ़ाया जाए या अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने ही मुंह से अपना गुणगान किया जाए, ये सब केवल पहली बार के लिए आपको कहीं पहुंचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि किसी की योग्यता उसके व्यवहार और उसकी काबिलियत से ही साबित होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब दिखावे का पर्दा हटता है तो सामने आती है वास्तविकता। लोग उसी वास्तविकता को देखकर आपसे जुड़ते हैं। यहाँ ना कोई तारीफ काम आती है और ना ही कोई पीआर। काम आता है तो केवल आपका आचार विचार और व्यवहार। जब होता है अच्छा व्यवहार तो लोग आपकी पीठ पीछे भी करते हैं तारीफ। और यहाँ कोई पीआर काम नहीं करता, ये होता है उनका खालिस प्यार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
1: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों

0: बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम

0: दफ्तर जारी किए, आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नवमी। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल सुरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देवबर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आरजू फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज, हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया।

0: उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियाशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मिलन फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

रोशन का संगीत था। साहिर लुधियानवी की रचना आपने सुनी सुधा मल्होत्रा की आवाज में फिल्म बाबर से। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

पेश खिदमत है मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर की सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से सदानंद, अभयनंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलोदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतिन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इद्रीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश, श्यामला, अश्विन और आनंद मनविथ दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनतार अकोले से, राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। सच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारस मणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं सचिन नीलखन, आयुष पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत। ये हमारे रंगनाथ देवल गांव के श्रोता हैं मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: अब अगर हम

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद ने।

ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल धानवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश, शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा। और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे। हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे। और

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा महदेली खां के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है, और शाहिद दीपक और रुषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से, गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार, और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि चित्रंजन, सरोज, रितिका स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए। भेजते रहिए इसी तरह से अपने पत्र, और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
1: अरे भाई कृपण चंद, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
2: आओ भाई साहब।
1: अरे जल्दी आओ ना।
2: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
1: क्यों?
2: तुम तो जानते हो भाई, मेरी इकलौती पत्नी स्वर्ग सिधार गई है।
1: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
2: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता टूट फूट कर रहा हूँ।
1: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
2: मजाक ना करो दोस्त, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह को आ रहा है। आया आया कितना चाहती थी मुझे।
1: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
2: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
1: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
2: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती है। कोई कोई सी जान सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
2: नहीं तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती। भाई उधार चल।
1: हाँ उधार चल।
2: तुम मेरे दोस्त ही नहीं, सगे भाई की तरह हो।
1: सो तो
2: बोला तो ऐसा करो, तुम्हें कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूँ।
1: देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
2: बताओ बताओ जल्दी बताओ।
1: बताओ
2: बताओ
1: बताओ
2: बताओ। अरे
1: देखो भाई, तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवा दो।
2: जरी के काम की साड़ियाँ?
1: अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
2: साड़ियाँ जेवर? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा उसका है।
1: महंगा?
2: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उधार चंद भाई उधार चंद, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
2: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई,
1: हाँ?
2: साड़ी जेवर पर कमाई,
1: हाँ?
2: समझो उसकी आफत आई।
1: हाँ? तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
2: क्या मतलब?
1: अरे भाई जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
2: हाँ तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी बजाओ।
2: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई है कोई गारंटी? नहीं। अरे भाई तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
2: एक ही बार तो की थी।
1: हाँ एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
2: नहीं नहीं आया ऐसी बात नहीं भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदार चंद,
1: हाँ
2: कोई और नुस्खा सोचो।
1: नहीं नहीं भाई मैं कुछ नहीं जानता, बेटी तुम्हारी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं चला दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
2: सुनो मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
1: अच्छा?
2: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है मैं दुलारी को भेजवा देता हूँ।
2: दीदी को भेजना जरूर।
1: हाँ भेज दूंगा।
2: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी जेवर शादी, आया आया आया आया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आया
3: चाचा जी,
2: आते लगे तुम आते।
3: क्या बात है?

0: मुझे बताइए। चाचा जी मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
1: अरे वाह, शादी नहीं बर्बादी है। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
0: लेकिन चाचा जी,
1: उसने इसलिए पढ़ा दिया।
0: चाचा जी
1: चुप रहो।
0: रूपा किसी को चाहती
1: है? किसी का नाम है जी?
0: उसे पति चाहिए।
1: मैं कुछ नहीं जानता।
0: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए। उसकी शादी कर दीजिए।
1: मैं कुछ नहीं करूँगा।
0: रूपा देखा दुलारी, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर दे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद क्या गई, तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें।
2: प्यार हो गया, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा कर दूं? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
0: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा
1: क्या हुआ मेरी बेटी को?
0: बदकिस्मती।
1: अरे तुम्हारी बोलो तो
0: दुर्भाग्य।
1: अरे तो नहीं, क्या हुआ?
0: रूपा बहन,
1: क्या हुआ उसे?
0: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई, पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती।
1: अरे,
0: मेरे लिए अब एक ही रास्ता है।
1: क्या, क्या?
0: मौत।
1: और वो नीचे कूद गई?
0: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
1: क्यों?
0: चाचा जी अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
1: गई। मूर्छित हो गई?
0: मैं
1: अभी डॉक्टर को बताता हूँ,
0: जल्दी जाइए।
1: तब तक रूपा को देखो जाना। मैं अभी डॉक्टर।
0: रूपा लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
3: डॉक्टर?
0: हाँ हाँ,
3: अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
0: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा।
3: अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा।
0: चाचा जी आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी क्या बात है?
0: चाचा जी रूपा पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है।
4: मैं डॉक्टर बोगस चंद।
1: हाँ बोगस चंद, बिल्कुल बोगस।
4: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
5: और मैं हूँ कविराज
1: हूड़ानंद,
5: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता है।
6: मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, हकीम अहमक सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को।
1: अरे भाई मैंने कहा अपने मुमिया मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
4: क्या तकलीफ है आपको?
5: मुझे अपनी नाड़ी दिखाइए।
6: मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
1: सामान के मेरी बेटी नहीं, उसकी सहेली है।
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
5: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता सकते हैं।
6: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई, मरीजा कहाँ है?
1: आप मरीजा पूछ रहे हैं? जी वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
0: जाइए।
1: वो आ गया। क्या हाल है मेरी बेटी का?
4: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
1: गुड गुड।
4: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
1: क्या मक्खी हो जी? मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
5: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
6: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम

0: आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चैन?
1: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठनी साहब।
2: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
0: अच्छा,
2: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
3: अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। बेटी को देख लो।
1: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
2: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
0: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
1: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
2: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते
1: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
2: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई खटकता भी नहीं।
0: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए, शफा मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
2: अच्छा,
0: अब धोबी चंगा हो गया।
1: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
0: जानवरों के डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
1: गधों का इलाज करता हूँ।
2: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
3: बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप लोगों ने क्या किया?
2: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जाता।
3: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
2: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा
1: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
2: और अपनी भी तो कहो सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
0: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जाहिर और ठग हैं।
2: हाँ बिल्कुल।
0: अरे खानदानी हकीम का जनाब, सिर्फ मैं हूँ खानदानी हकीम। ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
3: मगर हकीम साहब, मरीज मैं नहीं, मेरी बेटी है।
1: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया
2: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
1: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को
0: देखने जाते
3: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस
1: और
3: तशरीफ ले जाइए
1: के लिए
3: दवा। से पाला पड़ा
4: चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने?
3: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
4: मैं तो पहले कह रही थी,
3: लगता है मेरी रूपा को मन कोई दूर कर नहीं पाएगा।
4: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
3: बेटी तू भी चलाएगी।
4: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
3: अरे तो जाना, जब मेरा मुंह क्या ताक रही है, जाकर जल्दी से बुला ला। और बेटी बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में।
4: मैं सब पक्का कर
3: लूंगी,
4: अभी गई और अभी आई।
3: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी आया। रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपया पर पानी फिर जाएगा। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
5: अरे भाई खबर क्या, डॉक्टर बोगस चंद ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
3: हाँ भाई, बेहोश पड़ी है।

0: अरे भाई, डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
1: क्या करूं, बताओ बताओ तुम्हें बताओ ना।
0: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख, तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ और जेवर लाया हूँ। बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
1: अपनी बकवास बंद करो उदास चंदा, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
0: अरे भाई, मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो
1: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो कि नहीं? बोलो करते हो नहीं? बोलो।
0: हाँ करता तो हूँ।
1: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
0: हाँ, बोलो।
1: मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
0: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। तुम सच्ची तो तुम्हारी बेटी है, जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
0: अब ठीक है, अब मुझे क्या?
1: हाँ हाँ, जाओ जाओ, दोस्त कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो, देखो, देखो रूपा का क्या हाल है।
2: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
3: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना।
2: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइया हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
3: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो?
2: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें। बस
3: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करूंगा।
1: अरे अरे बेटी, दुलारी दुलारी रूपा की हालत
2: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: अरे ये डॉक्टर है
2: क्यों?
1: एकदम छोकरा
4: श्रीमान जी।
1: ये क्या इलाज करेगा?
4: आप मुझे मामूली डॉक्टर न समझें।
1: अच्छा?
4: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी?
4: ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
1: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
4: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
1: अच्छा
4: जी? हाँ।
2: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब चल कर उसे देख लीजिए।
4: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
2: मगर वो तो बेहोश है।
4: जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है। जाकर मरीजा को ले आओ।
2: अभी लाई, अभी लाई।
1: कमाल है, वाह वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
4: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
1: मगर डॉक्टर साहब
4: जी,
1: चेहरा अभी भी पीला है। कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल ठीक से चल नहीं पाती।
4: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए, मरीज आ गई।
4: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने ही बातें करो।
2: मगर चाचा जी, ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
1: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
4: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: अच्छा चाचा जी, आइए हम लोग उस कोने में चले, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
1: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
3: मैं आ गया।
2: मेरी
1: दुलारी,
2: मेरी आंखें थोड़ी।
1: डॉक्टर क्या गुसर गुसर रहा है?
2: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
1: अरे मगर वो तो एकदम सट कर खड़ा है।
2: तो क्या हुआ चाचा जी? रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना?
1: डॉक्टर साहब
4: जी,
1: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
4: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
1: अच्छा अच्छा,
4: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा
1: जी? आप पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन कर ले जा।

0: अच्छा,
1: देखिए दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
0: अच्छा
1: जी हाँ, अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
0: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
1: जी हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का
0: पूछा। शादी?
1: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
0: बिल्कुल
1: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
0: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
1: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
2: तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
0: क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
1: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
0: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
1: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
0: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे?
1: जी नहीं, जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
0: फिर क्या करें बताइए।
1: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
0: नाटक?
1: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
0: आपका मतलब है कि?
1: हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
0: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
0: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? हाँ बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
1: हाँ, ये समस्या।
0: वही वही ना बात।
2: चाचा साहब, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
1: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
0: हो तो सकता है, लेकिन
2: अरे लेकिन बेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए। रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
1: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
2: डॉक्टर साहब, आप कृपा करके हमारी विनती मान लें, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दें। मैं अभी रूपा को लाती
0: हूँ। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
1: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
0: वेरी गुड, गुड।
1: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
0: सही है, बिल्कुल सही।
1: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
2: रूपा आ गई चाचा जी।
0: बहुत अच्छा बेटी, इतने नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
2: क्या ये सच है पिताजी?
0: हाँ, पसंद है।
2: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
0: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
2: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
0: अरे सुन तो, अरे सुन तो पिताजी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है, नाटक।
2: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
0: अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना।
2: नहीं, लेकिन
0: बेटी ला तो अपना हाथ ऐसे। हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ।
1: लेकिन वो
0: नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाती दो। ला बेटी हाथ। हाँ, ए जिनो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
2: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
0: ये तो ठीक है।
3: जजमान, मैं कराऊंगा ब्याह।
0: लेकिन पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है, जो है सो जजमान है। कहाँ है ये संसार, जो है ये रंगशाला है, जिसमें हम आप सब अभिनेता है।
1: तो जजमान, वरवधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: तो ठीक है, तुम ठीक है।
3: तो बच्चा लोग, अब तुम जरा इसके आसपास फेरे लगा लो, जो है तो।
1: मंगलम भगवान विष्णुम, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरी।

0: समझ लो यजमान हमारे भी पल कहीं सदाशिव भाग्यवती रहो सदाशिव भाग्यवती रहो। हाँ यजमान अब सुनिए यजमान अब आप कन्या और भर को आशीर्वाद दे दें जो है और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
1: पंडित जी मेरी बात तो
2: चाचा जी आशीर्वाद में कंजूसी कैसी दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
1: पक्का होना चाहिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोली ये जोड़ी जुग जुग
3: यानी कि चट मांगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियाँ और जेवर।
1: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया बैठो तुम।
0: अच्छा अच्छा जी मैं बोले तो अब हमारी दक्षिणा तुमने जाए जो
1: कैसी दक्षिणा शादी तो
2: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी। पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
1: और यहाँ तो सिदारी
0: जय हो जजमान की। आए ये क्या किया उन्हें भी आने पैसे जो जो। अरे राम राम जब जजमान एकदम पक्की शादी कराई है कम से कम सवा पांच रुपए तो दीजिए।
1: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो नहीं तो उसे भी लौटा।
0: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान। मैं जाता हूँ।
4: अब हमें भी आज्ञा दीजिए। चलो रुको
1: कहाँ तुम लोग कहाँ जाओगे भाई।
2: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी वहीं जा रहे हैं।
1: ये क्या मजाक है। देखा तुमने देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
3: अरे इसमें बनाने की क्या बात है। अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दिया है किरमन चंद तो उसे विदा भी कर दो।
1: कैसी शादी कैसी विदा। अरे उदासन तुम नहीं समझते भाई तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
3: इलाज नाटक भाई ये सब क्या चक्कर है यानी कि।
4: अब हमें क्या मालूम। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
1: अरे अरे अरे रोको अरे रोको अरे अरे रोको अरे अरे रोको अरे रोको अरे उदास क्या।
3: हाँ भैया कृपण चंद
1: गए
2: नहीं
1: तो जाने तो क्या हुआ। उदारजन के बकवास ये बिल्कुल बकवास है। उदारजन ये डॉक्टर था डॉक्टर। मेरी लड़की को ले भागा उदारजन मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। दुलारी से पूछ
3: लो दुलारी क्या बात है।
2: कुछ नहीं पिताजी रूपा प्रेम बाबू को चाहती है
3: ठीक है
2: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं थे इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना पड़ा।
1: नाटक
3: भाई कृपण चंद आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए।
1: अरे ये क्या हो गया। मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। आया अरे अरे भाई उधार चल।
3: हाँ कृपण चल।
1: अरे संभालो
3: हो गया।
1: अरे चक्कर आ रहा
3: चक्कर चक्कर
1: अरे नहीं अल्ले चल।
5: पुराना मर्ज नया इलाज ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मौलियर रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी।
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी
2: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
1: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
2: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे, पर जैसे चौथी क्लास के बाद में पांचवी क्लास में थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया, उस गांव का नाम था नेकनूर
1: जी, सुंदर नाम है।
2: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
2: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़कर सुनते थे।
1: वाह।
2: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की, और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए, और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह।
2: तो मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे?
2: पिता

0: मेरे यहाँ किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी, मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है।
1: जी जी
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी जी
0: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
1: जी जी
0: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते हैं। आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था,
1: जी
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी, और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी जी,
0: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पत्रे की शेड था।
1: हाँ।
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गाय हैं भैंसे हैं बकरियां हैं वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे, तो वो सारा गोबर ये सब साफ करके उसके बाद बरसात पत्रे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग
1: जी,
0: जिसको
1: तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में आती
0: है। मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है।
1: जी,
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधड़ी आते हैं, ये आता है वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहां कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं, वो मुझे घर में बैठे

0: बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी माता जी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बादुर।
0: बनने के बा।

0: बावन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक

0: बारूद के ऊपर इनैक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितकी जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
1: जी।
0: तो वो, और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है उसमें, ह्यूमर भी है उसमें, मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
1: वाह,
0: बड़ी बड़ी मूछें, इतनी लंबी दाढ़ी है फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
1: यस,
0: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहे है और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
1: क्या बात,
0: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे।
1: वाह,
0: वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा, या मैं हाथ जीतूंगा कि आप हारोगे,
1: जैसे
0: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
1: ओहो, पूरी रात,
0: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव के जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
1: बचपन में याद हो गए थे भारूड,
0: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
1: अरे
0: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा, ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो भारूड वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: युवा जोगी जी।
1: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
2: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था। जो मेरे साथी थे, जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
1: जी,
2: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहां पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब यह है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड में ही पढ़ता रहा
1: जी। एक नई दुनिया खुली,
2: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
1: ओहो,
2: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में बलबीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
2: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है। पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो वो कमिश्नर ऑफिस था वो,
1: जी
2: तो वो और भी बढ़ गया।

0: वहां यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है, 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंग है, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी।
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहां। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था। जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड में आने के बाद, बीड एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शुरुआती तौर पर याद है, इतनी सारी फिल्में याद है। जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के

0: सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
1: दारा सिंह
0: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं, तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में 5-6 सिनेमा तो देख ही लेते थे।
1: कितना रोमांचक था ये,
0: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
1: वाह वाह।
0: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में,
1: हाँ, हाँ।
0: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे
1: चढ़ रहा,
0: है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
1: जी,
0: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया।
1: जी जी,
0: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
1: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी।
0: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
1: लड़की बने थे,
0: लड़की बना था मैं, और अब नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
1: ओ,
0: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
1: जी।
0: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड़ में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला,
1: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे।
0: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहां जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
1: जी।
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है। जब कॉलेज में आया, 2-3 साल गैदरिंग में काम किया, और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था, और 2.5 एकड़ प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में। तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर, ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया। और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में, तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे।
1: जी जी,
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां 1 साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे। कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली
1: जी।
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही, क्या कहती थी, कि बहुत गरीब किसान का बेटा था तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना, पर वो स्कॉलरशिप मिली इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ।
1: क्या बात है।

0: बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहां तक की, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे हैं। आपने बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी,
1: मुगले आजम देखी।
0: वाह, मुगले आजम का गाना,
1: मुगले आजम का गाना सुनते हैं।
0: जब प्यार किया तो डरना
1: क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस होके किसी के प्यार में पड़ो वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की

0: दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: का। जी जी जी, गैदरिंग का
1: मामला। उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था, तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस, मुझे याद आ रहा है नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी।
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया, तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे, तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहां दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ ओ ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिंद कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोलस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्रिम्बक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे, तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया, और मैं वो रोल निभाया, और उसके 10-15 शो हमने किए।
0: वाह।
1: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य है,
0: ओहो
1: रुकिए राम राज आ रहा है।
0: हाँ।
1: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया। और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो
0: जी,
1: वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
0: गजब गजब।
1: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
0: अरे
1: हाँ। तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहां मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म। तो ये परफॉर्मेंस करते रहे, पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
0: जी।
1: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मूवमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के

0: द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे थे और एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है, तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की, वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल नाट्यशास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी, जी।
1: मैं हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करें, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये कसम खाई थी मैं जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो मैंने, तो मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए। मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह।
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें, मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल्स स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है

0: सब पढ़ ली
1: जी।
0: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहां भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला।
1: तो एक सॉलिड बैकग्राउंड लिखे गए,
0: एक सॉलिड बैकग्राउंड, और प्रैक्टिकली भी आप फोक से तो थे ही, फोक का होता आपके ऊपर। और कॉलेज में दो तीन साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अंबेचा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था, लोग एक्चुअली
1: पैसे फेंकते थे,
0: इतने पैसे फेंकते थे।
1: वाह।
0: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के
1: पेट में लगा,
0: हाँ पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई।
1: अरे बाप।
0: उसके बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर भाई, केशर काकू, हम उनको काकू बोलते थे। तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था।
1: हाँ।
0: अब वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए
1: जी,
0: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
1: मॉडल भी लेके,
0: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है और सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाई है। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया। तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया, और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
1: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूँ, पर यहाँ एक गाना सुनना है
0: यार, रहमान का लगाइए।
1: ठीक है, दिल से गाना सुनना, दिल से।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दीवानापन जब हदों से गुजर जाए तो इश्क इबादत बन जाता है। फिर हर धड़कन में बस एक ही नाम गूंजता है, हर रास्ता उसी की ओर मुड़ जाता है। कहते हैं सच्चे दीवाने मंजिल नहीं देखते, वो तो सफर से ही मोहब्बत कर बैठते हैं। उन्हें खुशी इस बात की नहीं होती कि कोई उनका हो गया, बल्कि इस बात की होती है कि उनका दिल किसी के नाम पर धड़कना सीख गया।

वो कभी मुस्कुराकर हाल पूछती है तो कभी मेरी खामोशी को भी पढ़ लेती है। समझ नहीं आता ये बस अपनापन है या वो मेरे दिल की आहटें सुन लेती है। उसकी नजरों में कुछ तो राज छिपा है जो हर मुलाकात में थोड़ा और खुल जाता है। दिल कहता है ये मोहब्बत है, पर उसकी खामोशी हमेशा उलझा देती है और दिल में एक ही सवाल बार बार उभर आता है।

मैं सोचता हूं क्या तोहफा दूं उसे जो उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर ठहर जाए। फूल दूं तो मुरझा जाएंगे, चांद दूं तो हर रात बदल जाएगा। फिर सोचा अपनी धड़कनों की स्याही से कुछ अल्फाज लिख दूं उसके नाम पर, या फिर वफा की खुशबू अपनी हर खुशी उसके नाम कर दूं। मेरे पास सबसे कीमती मेरा दिल था, तो आज उसी को करता हूं नाम तुम्हारे।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। जब आना मेरे पास तो अपनी आंखों में थोड़ा सा इश्क और ढेर सारा नूर लाना, होठों पर वही शरारती मुस्कान जिसे देखकर मेरी धड़कनें मुस्कुरा उठें, और हाँ एक वादा भी साथ लेते आना कि हर खुशी में मेरा हाथ थामोगे और हर मुश्किल में मेरा साथ निभाओगे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर मुलाकात अपने आप में सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है।

कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाते हैं। वो दिल से निकलते हैं और सीधे रूह तक पहुंचते हैं। मैंने तुम्हें देने के लिए ना सितारे तोड़े हैं, ना ही चांद चुराया है। मैं तो बस अपना दिल, अपना अटूट भरोसा और उम्र भर की सच्ची मोहब्बत लेकर आया हूँ। दुनिया के सबसे अनमोल उपहार बाजारों में नहीं मिलते, वो किसी सच्चे दिल की धड़कनों में बसते हैं।

दिल का नजराना पाकर मन मयूर नाच उठता है। गोरी के पैरों की पायल भी जैसे मधुर गीत गाने लगती है। लबों पर अनकही मुस्कान के फूल खिल उठते हैं। दिल की हर धड़कन बस एक ही नाम गुनगुनाने लगती है। हर मौसम सुहाना सा लगता है। हवाओं में किसी की मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है और सिर्फ पायल ही नहीं, पूरी जिंदगी प्रेम का गीत गाने लगती है।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: प्रस्तुत कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज दर्शन रावल की थी। गीत के बोल गुरप्रीत सैनी के और संगीत रोचक कोहली और शरण रावत का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पहेली से। आवाजें सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और साथियों की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत एमएम करीम का।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: मेरे पिया दे रंग किया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से। आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत की रचना जावेद अख्तर की और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गली।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म मुसाफिर से, आवाज़ें सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा की थी। गीत के बोल देव कोहली के और संगीत विशाल शेखर का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म यार यार टू से, आवाज़ सचेत टंडन की थी। गीत के बोल मनन भारद्वाज और मीरा बाई के, संगीत मनन भारद्वाज और नुसरत फतेह अली खान का था। थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और

0: कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रूपये की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ से, आवाज़ चित्रा की थी। गीत के बोल देव कोहली के और संगीत अनु मलिक का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। आवाज़ें अलका याग्निक और अभिजीत की थी। गीत के बोल इब्राहिम अश्क के और संगीत राजेश रोशन का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है। तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से, आवाजें हरिचरण शेषाद्री और श्रेया घोषाल की है। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने नए पुराने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन 6:35 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला वर्षा चौमासा। इसमें कलाकार होंगे गायिका शुभा मुद्गल। इस कार्यक्रम का 16वां भाग आप सुनेंगे, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र एयर वाइस मार्शल सेशिल विवियन पार्कर पर आधारित कार्यक्रम होगा। संपादन एवं प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साज और आवाज। गिटार पर होंगे

शोमू सील। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, इसमें आप सुनेंगे हास्य नाटिका कंगन, लेखन ब्रिजमोहन का, निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। रात 8:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक। समाचार संध्या 8:45 पर होगा। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9 बजे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री राखी को, प्रस्तुति रमेश गोखले की। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। विविधा कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 11 बजे। ये थी झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन बार। छह 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस का 283वां भाग। 6:00 इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रवाह का पहला भाग। कलाकार होंगे पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, इसमें आप सुनेंगे अभिनेता सचिन पिलगांवकर को, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम पिटारा, इसमें आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर बामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग योगिता जाधव, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। रंग तरंग कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 11 बजे। 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन सकेंगे 1 बजे। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम सुनवाएंगे 3:00। कार्यक्रम पिटारा आप सुन सकेंगे शाम 4 बजे, इसमें आप सुनेंगे सेहतनामा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षद राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत, संपादन काजल भदर के, प्रस्तुति जुबेर खान की।

शाम 5 बजे छायागीत का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनवाएंगे शाम 5:30 पर। संध्या रंजन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक का पहला भाग, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। आप इसमें सुनेंगे फिल्म एक ही फिल्म से गीत 1942 अ लव स्टोरी। रात 8 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हवा महल। इसमें आप सुनेंगे झलकी शाही दावत, लेखन पीवी राव का, निर्देशन साधना भारद्वाज। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम आपके लिए

आपको सुनवाएंगे रात 9 बजे। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, निर्देशक डेविड धवन पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। छायागीत कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। कार्यक्रम ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोका के अंतर्गत कल और आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

श्रोता, यह गीत आपने सुना फिल्म ओ माय गॉड टू से। आवाज़ हंसराज रघुवंशी की थी। गीत के बोल कबीर शुक्ला, हंसराज रघुवंशी और डीजे स्ट्रिंग्स के। संगीत हंसराज रघुवंशी, राही और डीजे स्ट्रिंग्स का।

0: श्रोता, एक गीत आपने सुना फिल्म भैरवी से, आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौड़ की थी। गीत के बोल अमित खन्ना के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

श्रोता मित्रों नमस्कार। ये श्रृंखला वर्षा चौमासा, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में वर्षा से संबंधित, बरसात से संबंधित जो बंदिशें गाई जाती हैं, उनमें से कुछ बंदिशें शोभा जी ने हमें सुनाई, रागों के बारे में चर्चा की। इसी का एक

0: पक्ष और भी है कि इस वर्षा काल में बहुत से त्योहार आते हैं, व्रत त्योहार जिसे हम कहते हैं कि तीज त्योहार। तो तीज के बारे में तो बातचीत हो गई, लेकिन और भी कई त्योहार हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। शुभा जी, कृष्ण जन्माष्टमी का जिक्र हमने पहले किया
1: जी
0: था,
1: जी हाँ।
0: और नाग पंचमी भी होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और रक्षाबंधन भी तो होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो क्या इन सभी त्योहारों को लेके अवश्य ही पद होंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: कृष्ण मंदिरों में तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसके काफी पद मिलते हैं, और एक प्रस्तुत करना चाहूंगी मैं, बल्कि उन मंदिर के साहित्य में तो पद के साथ साथ ये भी मिलता है कि किस राग में उसे गाना उचित होगा। तो सारंग में ये इस चीज को गाने का प्रयास है, और यही उन्होंने वैसे निर्धारित भी किया है। तो बोल इस प्रकार है, राखी राखो सुंदर कर वर, सुंदर कर पे हाथ पे राखी रखिए, राखी राखो सुंदर कर वर, तिथि पुण्यो शुभ दिवस, शुभ दिवस तिथि पुण्यो शुभ दिवस सलूनियो झूलो मुदित परस्पर। देखो प्रिया अलौकिक भूषण में गुथियो देके मुक्ता लर, मतलब
0: मुक्ता की लड़ी जो मोतियों की लड़ी है,
1: लड़ी उन्होंने गूंथी है राखी में। श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, और वो सुंदर श्याम भी और गौर भी, राधा जी गोरी और श्री कृष्ण श्याम, श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, लटकत रुचिर पाट के फुंदना कमल नाल मधुप लगे गर, झूलन माही विलोलत ज्यो ज्यो देखी हसत दोऊ हर हर, लय हो झगर झगर इत उतते रहस बधाई मृदु मुस्कन तर, वृंदावन हित रूप बल गई रमकन लाग्यो शोभा झर। ऐसा रक्षाबंधन का पद मिलता है।
0: इसमें भी ये राधा और कृष्ण झूल रहे हैं, तो कहा जाए तो ये झूला ही है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन की बात आई है,
1: विशेष उल्लेख है रक्षाबंधन का, और कैसी राखी बनी है वो भी
0: जी। और ये भी मैंने सुना कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों ही के हाथों में राखी है बंधी हुई
1: जी।
0: तो जो राखी प्रतीक हम कहते हैं कि भाई को पहनाती है, बांधती है बहन, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को भाईचारे के लिए एक
1: वो भी है। और वैसे कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां पे भाई के साथ साथ भाभी को भी लूम्बा नाम की एक ऐसी बड़ी सुंदर सी एक लटकन सी होती है, वो उनकी उनके कंगन में या चूड़ी में बांधी जाती है, ऐसी भी प्रथा होती है। उसे कुछ लोग लूम्बा कहते हैं, कुछ और नाम से भी कहा जाता है, लेकिन भाभी को भी उनके सम्मान के लिए अगर भाई को राखी बांध रहे हैं तो लूम्बा भाभी को भी बांधा जाता है
0: जी। तो इसी तरह से ये राधा जी और कृष्ण मुरारी, इनके हाथों में राखी बंधी है। सुनाइए ना पद।

0: शुभा जी, ये रक्षाबंधन का तो पद, ये रचना हमने सुनी, लेकिन मूलतः कृष्ण जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक तो ये सब
1: बिल्कुल
0: तो जन्माष्टमी का भी बड़ा महत्व इस वर्षाकाल में होता है क्योंकि उसी समय में कृष्ण जी का जन्म हुआ
1: जी। लेकिन आपको एक बधाई का पद सुनाना चाहती हूँ मैं। आज बधाई मंगल गावत, जायो जसुमती लाल मनोहर, सुनी सुनी सब सच पावत। अब इसमें देखिए कि कितने कितने प्रकार के साज बज रहे हैं। ताल मृदंग दमामे गोमुख, भेरी ढोल बजावत, आनंद बरसो सब ब्रज हर्षो, जहां तहां ते धावत। दौड़ दौड़ के आ रहे हैं लोग, सब बाजे गाजे बज रहे हैं। हाथन भेंट ललित गति कामिनी, नंद सदन में आवत, निरख निरख मोहन सोहन मुख, फूलत नयन सिरावत। आंगन नाचत गोप छबीले, अद्भुत रंग बढ़ावत, लय लय छिरकत दूध दही घृत, हरदी कीच मचावत। तो सब चीजें जो है जो चढ़ रही हैं उनसे तो कीचड़ हो गया पूरा, इतना दूध दही हल्दी इत्यादि डाला गया। रोरी तिलक दुकूल सुभूषण, नंद सबन पहरावत। और जो आते हैं बधाई देने के लिए उनको खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं नंद राय, तो वो भी उनका सम्मान करने के लिए रोली का तिलक करते हैं, उनको भूषण आदि देते हैं। जस गावन को हित दामोदर, दास बधाई पावत।

0: श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में अभी आपने हमारी श्रृंखला वर्षा चौमासा की 16वीं और आखिरी कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रही थी प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक की थी। तबले पर संगत अनीश प्रधान की। ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायिका विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। क्या कभी आपने आसमान में उड़ने का सपना देखा है? बादलों के ऊपर की वो दुनिया एक अलग ही रोमांच से भरी होती है। जहां ऊंचाई का रोमांच है, वहीं खतरे भी कम नहीं। एक छोटी सी भूल भी बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन चील सी पैनी नजर दुश्मनों पर जमाए अपनी मातृभूमि की रक्षा करने को तत्पर हमारे वीर जवान सागर की गहराई, पहाड़ों की चढ़ाई और आसमान की ऊंचाई नापने का हौसला रखते हैं। इनकी जांबाजी से भरे कई कारनामे हम देखते सुनते नहीं अघाते। आंखें हैरानी से फैल जाती हैं तो दिल गर्व से भर उठता है। आज एक ऐसे ही अद्भुत वीर की शौर्य गाथा का वर्णन हम करने आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल ससिल विवियन पार्कर।

एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर, जिन्हें उपनाम मिला नोजी। सिकंदराबाद में जन्मे सेसिल विवियन पार्कर भारतीय वायुसेना में 31 अगस्त 1952 में कमीशन हुए। 30 अगस्त 1957 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे। एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर ने सेना में प्रशिक्षण देने और मोर्चों पर बने रहने का काम किया। अक्टूबर 1966 में उन्होंने एक ऑपरेशनल यूनिट का गठन किया और यूनिट के पहले कमांडिंग ऑफिसर बने। इस यूनिट से जो भी विद्यार्थी आगे बढ़े, उन्हें उच्च स्तर के शिक्षण तकनीक, मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इस यूनिट ने प्रशिक्षण और ऑपरेशनल दो भूमिकाएं निभाई, जिनमें वो विभिन्न कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए सफल हुए। जिस तरह से उस वक्त एक विंग कमांडर के रूप में सेसिल विवियन पार्कर ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने प्रयास से

दुर्घटना संख्या के साथ विमानों का उच्चतम उपयोग कर दिखाया। इसके लिए उन्हें 26 जनवरी 1970 को वायुसेना पदक से नवाजा गया।

जब एक व्यक्ति सैनिक जीवन में ढलने का निर्णय लेता है तो वो पूरी तरह से खुद को मातृभूमि के लिए समर्पित पाता है। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह का स्वार्थ छू भी नहीं पाता। लेकिन अगर हम ये समझें कि सैनिक का जीवन एक ही ढर्रे पर चलता हुआ या नीरस सा होता है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। छोटी उम्र से कठिनाइयों का सामना करने वाले हमारे जांबाज सिपाही मन में कहीं न कहीं एक बच्चे, एक किशोर को जीवित रखते हैं। जब भी मौका मिलता है वो अपने साथियों के साथ उस अल्हड़पन को भी जरूर जीते हैं। एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर के विषय में उनके साथी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। खाने पीने और मौज मस्ती को अपनाकर जीने वाले एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर यूं तो मस्त मौला अंदाज के मालूम होते हैं, लेकिन उनके कारनामे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कठिन चुनौतियों में वो साहस और धैर्य का किस कदर परिचय देते हैं और एक नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं। ऐसा एक रोमांचक वाक्या उन्होंने अपने ही एक इंटरव्यू में बताया था। अपने जीवन में तरह तरह के एयरक्राफ्ट की उड़ान भर चुके एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर ने बताया कि जब उन्हें रोजाना प्रशिक्षण के दौरान फ्लाइट उड़ाने कहा जाता था तो वो कई तरह के कर्तव्य किया करते थे। उनका कहना है कि जब विमान को कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है तो ये एक अलग ही तरह का कौशल होता है और सभी फ्लाइट पायलट्स को प्रिय भी होता है। उन्होंने बताया कि 1956 में वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत थे। तब रोजाना प्रशिक्षण के लिए फ्लाइट ले जा रहे थे कि उन्हें एक जूनियर को साथ ले जाने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि वो उस जूनियर को 500 फीट 300 फीट की ऊंचाई का अंदाजा करवा दे और थोड़ा नीचे लाकर भी दिखा दे। ऐसा करते हुए एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर ने अपने जूनियर को 100 फीट की ऊंचाई तक ले आए। जूनियर ने फ्लाइट संभालने की इच्छा जताई तो एयर वाइस मार्शल सेसिल विविन पार्कर ने उन्हें फ्लाइट दे दी। अब कुछ ही देर में फ्लाइट के सामने पेड़ नजर आने लगा और संभालने के बावजूद फ्लाइट पेड़ के ऊपर जा भिड़ी। सीवी पार्कर ने कमान अपने हाथ में संभाली और तुरंत हेडक्वार्टर में सूचना दी। इस पूरी बात में उन्होंने सच बताते हुए सारी बात सामने रखी। उनकी सच्चाई ही थी जिसने उन्हें वापस भारतीय वायुसेना में अपनी जगह बनाने का मौका दिया। कुछ 6 महीने की सजा और 200 रुपए के जुर्माना भरने के बाद उन्हें वापस फ्लाइट की कमांड दी गई।

हम देखते हैं कि बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पहला कदम बढ़ाते ही गिर जाता है। गिरने के बाद उठने के कारण ही चलना सीखना संभव होता है। लेकिन बड़े होते होते हम ये सबक भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पहली ही बार में सफल होना चाहिए, वरना हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमारे जवानों के साथ ऐसा नहीं है। वो कड़े प्रशिक्षण के दौर से गुजरते हैं और खुद को लगातार मांझते हुए हर दिन एक नए उत्साह को दिल में जगह देते हैं। आप ही सोचिए, आप और हम में से अगर किसी को प्रशिक्षण के पहले ही दिन जान से खेलना पड़े तो क्या हम वापस जाने के बारे में सोचेंगे? लेकिन ऐसा किसी जवान के साथ हो तो वो न सिर्फ वापस जाएंगे बल्कि अपनी वीरता से देश का गौरव हासिल करने का मौका भी नहीं छोड़ेंगे। अपना 20वां जन्मदिन मनाने से कुछ हफ्ते दूर पहली ट्रेनिंग के दौरान ही एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।

देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। कोई भी नौजवान जब सिपाही बनने का सपना लिए जाता है तो उसके दिल में एक अलग ही जज्बा होता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का मादा तो रखता है, लेकिन ट्रेनिंग के दिन आसान नहीं होते। फिर जब पहले ही दिन जान पर बनाए तो क्या किया जाए, आप और हम क्या करेंगे ये तो पता नहीं। लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही दिन जो सेसिल विवियन पार्कर ने किया था वो काबिले तारीफ है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा। अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में सेसिल विवियन पार्कर टेम्पेस्ट 2 एक एयरक्राफ्ट में सवार थे और उन्होंने देखा कि फ्रंट पैनल खुल गया है और वहां आग भी नजर आ रही है। उन्होंने तुरंत एयरबेस में संपर्क किया, लेकिन जवाब आने तक रुकने का समय उनके पास है या नहीं वो ये नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बाहर निकलने के लिए कोशिश शुरू कर दी। सुरक्षा के जो तरीके उन्हें सिखाए गए थे वो अपनाते हुए वो दो बार तो सफल नहीं हुए, लेकिन तीसरी बार उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और आखिरकार एयरक्राफ्ट से बाहर फेंका गए। उनके पास पैराशूट तो था, लेकिन उनके दोनों जूते इस कोशिश में एयरक्राफ्ट में खिंचा गए। जब वो जमीन पर नीचे आए तब उनके दोनों पैरों में जूते नहीं

थे। कुछ जख्म, थोड़े जलने के निशान और पैरों में चोट के साथ वो नीचे उतरे और कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक होकर एक बार फिर आसमान में हवा से बातें करने के लिए वो तैयार थे। आखिर यही तो वो साहस और जज्बा है जो हमारे वीर सैनिकों को एक मिसाल बनाता।

ट्रेनिंग के पहले दिन ही मौत को मात देने वाले एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की जांबाजी के किस्से कम नहीं हैं। एयरक्राफ्ट चालकों को समय समय पर कई काम करने होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब 1970 में वो कुछ साथियों के साथ नेपाम टैंक छोड़ने एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस गए। इसके लिए एयरक्राफ्ट के एक विंग में दो और दूसरे में एक या दो टैंक रखकर ले जाया जाता है। आसमान बादलों से भरा होने के कारण नीची उड़ान भरकर ले जाया जाता है। जब टैंक छोड़कर वो वापस आने लगे तो सेसिल विवियन पार्कर ने देखा कि 16 टैंक भेजे गए थे लेकिन उतारे गए सिर्फ 15। वो इस ओर ध्यान दे ही रहे थे कि उन्हें अपने एयरक्राफ्ट की राइट विंग झुकती हुई महसूस हुई। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो टैंक उनके एयरक्राफ्ट में ही रह गया है। यही नहीं, टैंक पूरी तरह भरा हुआ भी था और उसका वो हुक खुला हुआ था जो फायर करने के समय खोला जाता है। सेसिल विवियन पार्कर अपने एयरक्राफ्ट में खतरनाक टैंक के साथ थे, पर उन्होंने न घबराते हुए अपने सभी साथियों को पहले लैंड करने की सलाह दी। सेसिल विवियन पार्कर ने जैसे ही एक टैंक खुली हुई अवस्था में उनके एयरक्राफ्ट में होने की बात कही तो नीचे खलबली मच गई। उन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया और एक बार फिर वापस उनके एयरबेस जाने का ऑर्डर दिया गया। अब मजबूरी ये थी कि वहाँ भी केवल एक रनवे होने और उसके व्यस्त होने के कारण आखिर उन्हें दूसरी जगह एयरक्राफ्ट उतारने की सलाह दी गई। अपनी सूझबूझ, बहादुरी और धैर्य का परिचय देते हुए सेसिल विवियन पार्कर ने बड़ी सावधानी से बिना कोई नुकसान पहुंचाए एयरक्राफ्ट को लैंड किया। जांच के बाद ये पता चला कि कुछ तकनीकी खामियों और हवा के दबाव के कारण टैंक का हुक खुल गया था। ये सेसिल विवियन पार्कर की सूझबूझ का ही नतीजा था कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए सेना की संपत्ति की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाई।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा। 1971 में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध में सेसिल विवियन पार्कर ने विंग कमांडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बम वर्षक स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया और दुश्मनों के कब्जे वाले ऐसे कई क्षेत्रों में पहुंचकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जहां पहुंचना मुश्किल था। ऐसे कई मिशन का उन्होंने नेतृत्व किया। ऐसे ही एक मिशन से लौटते समय दुश्मन सेना के कृपाण विमानों ने उनकी वायुसेना टुकड़ी पर धावा बोल दिया। इस परिस्थिति में विंग कमांडर सेसिल विवियन पार्कर ने दुश्मन के एक कृपाण विमान को मार गिराया और दूसरे विमान को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया।

इसके अलावा एक अन्य मिशन में भी उन्होंने दुश्मनों के तीव्र एयरक्राफ्ट और छोटे हथियारों के हमले का सामना करते हुए अटक में दुश्मन की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया और भारी नुकसान पहुंचाया।

युद्ध के दौरान अपने हर मिशन में सेसिल विवियन पार्कर ने साहस, दृढ़ संकल्प के साथ साथ धैर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए देश को जीत दिलाने का काम किया। उनके कामों को साहस और बहादुरी की उपमाओं से नवाजा गया। अपने कार्यों से जहां वो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहे, वहीं वो अपने मातहतों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में सामने आए। युद्ध और शांति दोनों ही परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर को युद्ध पश्चात देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

वीर चक्र से सम्मानित होने के बाद वो सेना में तकरीबन 15 वर्षों तक कार्यरत रहे। इस दौरान वो मोर्चों के साथ साथ प्रशिक्षण देने में व्यस्त रहे। पदोन्नति हासिल करते हुए वो क्रमशः विंग कमांडर, जीपी कैप्टन, एयर कोमोडोर और एयर वाइस मार्शल के पद पर कार्यरत रहे। 31 अगस्त 1986 को आप एयर वाइस मार्शल के पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए। उस वक्त आप एयरफोर्स अकेडमी में सेना नायक के पद पर कार्यरत थे। भारतीय वायुसेना में अपने 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर ने 22 तरह के एयरक्राफ्ट चलाने और तकरीबन 3,850 घंटे की उड़ान भरने का रिकॉर्ड कायम किया।

एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर ने सेवानिवृत्ति के बाद एक किताब भी लिखी जिसका नाम है एयरलूम्स रैंडम रिकलेक्शंस ऑफ एन एंसेंट एविएटर। हम तो यही कहेंगे कि अपने सैन्य जीवन में आसमान से बुलंद इरादे, हवा सा निर्भीक व्यक्तित्व और बादलों सा धीर धरने वाले एयर वाइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर का जीवन एक पाठशाला की तरह है जिससे आने वाली पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा और आज उनका नाम रोशन कर रहे हैं। देश के इस जांबाज सैनिक को हमारा सलाम।

विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित एयर वाइस मार्शल ससल विवियन पार्कर की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साज और आवाज। गिटार पर हैं शोमुसील। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत की धुन।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस गीत को फिल्म दीवार से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीत के बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत आर डी बर्मन का।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

आइए सुनते हैं अब इस गीत को, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से ये गीत है, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: आज प्रस्तुत है हास्य नाटिका कंगन। लेखक है ब्रिज मोहन, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: अरे वाह, आज किस भले आदमी का मुंह देखा है सुबह सुबह। सच, आज तो तकदीर जोर मार रही है मेरी। ये सोने का कंगन, इस तरह बड़ा मिला। हाय मुरारी लाल, किसी ने देखा तो नहीं?
2: कमाल है, आप हैं तो अकेले
1: जी,
2: फिर भी बातें किए जा रहे हैं। यहाँ तो कोई मुरारी लाल है नहीं, ना कोई मुरारी लाल है
1: जी। मुरारी लाल मेरा अपना नाम है।
2: अच्छा?
1: और अगर मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ तो आपको क्या परेशानी है?
2: मुझे क्या परेशानी हो सकती है? देखिए देखिए, बात यह है कि आदमी अपने आप से बातें कब करता है बताऊं?
1: कब करता?
2: जब वो परेशानी में हो, या ज्यादा खुशी में, या फिर
1: पागल हो। यही कहना चाहते हैं ना?
2: अरे नहीं मुरारी लाल जी, आप तो बुरा मान गए, नाराज होने लगे। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि आप अकेले ही बातें कर रहे हैं, तो पूछ लिया कोई खास बात है।
1: अरे वाह।

0: आप देखो वे? अरे जान न पहचान बड़े मियां सलाम, क्या मतलब है आपका है? अरे आप अपना रास्ता देखिए।
1: देखिए आपसे मतलब जरूर है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं ना, तो आपको कोई चीज मिल गई।
0: चीज कुछ तो नहीं मिला मुझे, कुछ भी तो नहीं।
1: कैसे नहीं मिला कुछ
0: जी?
1: मैंने अभी देखा है।
0: क्या देखा?
1: आपने जमीन से कुछ हटाकर अपनी जेब में रख लिया
2: जी। मैंने भी देखा है।
0: आपने भी देखा है? तो क्या आप दोनों ने देख लिया?
2: तो क्या अंधा समझते हो
0: मैं?
2: तो बोलो क्या उठाया है अभी अभी जमीन से?
0: जी बात ये है कि वो कंगन
2: देखे।
1: ये तो है सोने का।
0: जी हाँ।
1: एकदम असली
0: जी।
1: सोने का है,
2: बिल्कुल नया लगता है। चलकर पुलिस
1: पुलिस पुलिस थाने में जमा कराना चाहिए। ये मतलब आप कहा
0: क्या कह रहे हैं आप?
1: धीमे बोलिए, धीमे बोलिए। ऐसी बात कर रहे हैं आप, अगर किसी ने सुन लिया तो अरे लक्ष्मी लौट जाएगी।
2: तो क्या करना चाहिए फिर?
1: अरे करना क्या चाहिए, तो क्या नाम है दुलारी लाल जी, नहीं मुरारी लाल जी,
0: जी।
1: ऐसा है कि मुरारी लाल जी आप ही बताइए क्या करना चाहिए। सोने के कंगन का जो आपको मिला है
0: वो करना क्या चाहिए? अरे मुझे मिला है इसलिए मेरा हुआ, आप लोग बीच में बोलने वाले कौन होते हैं भाई?
2: क्या कहा, क्या कहा? कौन होते हैं हम लोग
0: जी?
2: और आप कौन होते हैं जी? मिली हुई चीज को पूरा हथियार लेने वाले।
0: धीमे
1: धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बोल रहा
0: हूँ, मैं तो धीमे बोल रहा हूँ।
1: आप अपने से काम लीजिए अपने से।
0: भाई तो मैं क्या करूँ, आप ही बता दीजिए ना
1: करना क्या है। कहीं एकांत में चल करके कंगन में से, मेरा मतलब अपना अपना हिस्सा बांट।
0: जी जी जी जी जी क्या क्या कहा आपने? अपना अपना हिस्सा जी, आप लोग इसमें कहां से हिस्सेदार हो गए भाई? अरे मिला तो मुझे, आप लोग अपना रास्ता देखिए। मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है।
2: देखिए साहूकारी की है आपने। अरे तेरी क्या अकल घास चढ़ने चली गई है?
1: देखिए शोर मत मचाइए,
0: मैं कहां मचा रहा हूँ?
1: आप तो नाराज होने लगे
0: जी।
2: अगर कंगन में से हिस्सा बांटने को तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं अभी पुलिस को खबर किए देता
1: हूँ। आप तो बस पानी की तरह उबलने लगे। जरा मुरारी लाल को सोचने समझने का मौका तो दीजिए। कहिए तो कहिए, वो क्या नाम है?
0: मुरारी लाल जी,
1: मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा
0: जी? आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: अरे भाई हम लोग तीन हैं
0: जी।
1: आपको कंगन तीन हिस्सों में बांटना पसंद है या फिर किसी चालाक बंदर को हिस्से बांटने के लिए नियुक्त किया
0: गया? मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है, मगर हम बांटेंगे कहाँ?
2: ये हुई ना कोई कायदे की बात, चलकर बगल वाले पार्क में बांट लेते
1: हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हिस्सा हिस्सा ईमानदारी से बांटा जाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जल्दी कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है।
1: अच्छी बात है, चलिए फिर चलिए उधर।
0: चलिए आइए ना, आप भी आइए।
2: हाँ चलिए
0: बैठिए।
1: हाँ तो मुरारी लाल जी,
0: जी
1: आप ही बताइए कि इस कंगन का बंटवारा कैसे किया जाए?
0: आप ही लोग बताइए ना।
2: हमारी समझ में तो एक बात आती है,
0: क्या?
2: कि इस सुंदर कंगन को काट कर बांटना बेकार है।
1: तो फिर क्या किया जाए?
2: देखिए ऐसा कीजिए
0: जी
2: कि ये पूरा का पूरा कंगन आप लोग मुझे दे दें और बदले में मुझसे 200 रुपए ले लीजिए। अपने हिस्से के बदले में आप लोग ये रुपए आधे आधे बांट लीजिए।
1: वाह भाई साहब, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तो बड़े चालाक बनते हैं जैसे हम लोग बिल्कुल ही मूर्ख हैं।
2: इसमें मूर्खता की क्या बात है?
1: अरे
2: आप लोगों को फोकट में 100-100 रुपए नहीं मिलेंगे।
1: हम लोगों को 100-100 रुपए और आपको 200 रुपए में पूरा कंगन है।
0: मैंने कंगन पाया है,
1: गलत बात नहीं कह रहा।
0: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरी समझ में तो ये आता है कि सराफा बाजार में चलकर इसे 3 बराबर हिस्सों में कटवा देते हैं, फिर अपना अपना हिस्सा लेने में सहूलियत रहे।
2: ये भी कोई अकलमंदी की बात कर रहे हैं, वहाँ जाकर फंसना है क्या?
1: मुरारी लाल जी बात तो सही है, अकल से काम लीजिए।
0: अरे भाई तो कीजिए,
2: उपाय एक ही है, ये कंगन मुझे सौंप दीजिए, बेच दीजिए।
1: लेकिन आप तो 200 रुपए की बात कर रहे हैं जी।
2: चलिए अगर आप 200 रुपए कम समझते हैं तो मैं ये 50 रुपए और बढ़ा सकता हूँ।
0: कमाल है आजी, आप 250 रुपए में सोने का कंगन खरीदना चाहते हैं?
2: देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है, 300 रुपए आप दे दीजिए और ये कंगन ले लीजिए, हम मुरारी लाल 150 बांट लेते हैं।
1: क्या कह रहे हैं जी आप? सिर्फ 150

0: रुपए में हाथ से सोने का कंगन चला जाने दो। कहाँ 150 रुपए और कहाँ ही सोने का कंगन। इतना बुद्धू नहीं हूँ मैं जितना आप लोग समझ रहे हैं।
1: देखिए भाई मुरारी लाल जी, कि अगर आप ये सोचें कि इस तरह से कंगन में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे तो मियाँ ये मिलने से रहे आपको।
0: इसे आप जरा सा कंगन कहते हैं
1: और क्या।
0: अरे सोने की चीज है, जरा सी तो होगी ही, कोई 1-2 किलो की थोड़ी होगी। अरे मैं 150 रुपए में ये कंगन हाथ से हरगिज नहीं जाने।
1: ये मत भूलिए मुरारी लाल जी, ये कंगन आपको रास्ते में पड़ा मिला है और इस पर हम दोनों का भी बराबर का हक बनता है।
0: रास्ते में पड़ा मिला है तो इसके मायने ये नहीं है कि आप लोग इसे सस्ते में हथिया ले।
2: धीरे देखिए आप लोग धीरे बोलिए।
0: मैं तो धीरे बोल रहा
2: हूं। अच्छे अच्छे खेल बिगड़ जाते हैं। झिक झिक मत कीजिए, मैं इस कंगन के 400 रुपए दे सकता हूँ। वो तो आज मेरी सैलरी मिली इसलिए पैसे पास में है। आप लोग अपने हिस्से में 200-200 रुपए बांट लीजिए।
1: हाँ ठीक है, हम लोगों को ये मंजूर। निकालिए आप 400 रुपए, हम लोग बिना किसी झंझट के 200-200 रुपए बांट लेते हैं। मुरली लाल जी आप कंगन इनको सौंप।
0: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मेरे हाथ से ये कंगन सिर्फ 200 रुपए में निकल जाए ये नहीं हो सकता।
2: देखिए मुरली लाल जी, मेरे 400 रुपए कम है तो आप ही बढ़ा करके दाम बोल दीजिए, हम लोग खुशी खुशी दो भागों में बांट लेंगे। क्यों भाई साहब, ठीक है?
1: बिल्कुल ठीक है,
2: आप ले लीजिएगा ये कंगन।
0: हाँ ये हुई ना कोई बात है, मैं तो इस कंगन के 500 रुपए दे सकता
2: हूँ। 500?
0: उन 500 रुपए में सिर्फ आप दोनों का हिस्सा रहेगा। आप लोगों को इस सौदे में कोई एतराज तो नहीं है?
1: चलिए हमें कोई एतराज नहीं है, हम लोग 250 रुपए खुशी से बांट लेंगे।
2: चलिए आप कह रहे हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है, ये कंगन आप ही रख लीजिए। आप तो बस जल्दी से 500 रुपए निकालिए।
0: लेकिन लेकिन इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपए।
1: तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें। आप अपनी सोने की अंगूठी जी और ये पुरानी घड़ी साथ में दे दें। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे।
2: ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिए, देर करने से काम बिगड़ सकता है ना।
0: अच्छी बात है, ये लीजिए 200 रुपए और ये लीजिए घड़ी
2: और वो अंगूठी,
0: और ये निकल नहीं रही है।
2: लाइए मैं निकाल।
0: ये लीजिए, ये रही अंगूठी। देखिए आप लोग आपस में झंझट मत कीजिएगा, बराबरी से अपना हिस्सा बांट लीजिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
2: अरे
0: कहिए
2: नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: ने ठीक ही कहा है, देने वाला जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। अरे फूल कली कहाँ हो?
4: अरे चूल्हे में।
3: अरे
4: तुमसे तो शादी करके मेरी सारी जिंदगी चूल्हे में ही मिल गई।
3: अरे
4: क्या हुआ, ले आए सारा सामान?
3: फूल कली अभी घर गृहस्थी के सामान की बात मत करो।
4: अरे क्यों ना करूं, घर में कुछ बचा नहीं है, कल से उपवास करना है क्या?
3: अरे नहीं फूल कली।
4: फिर क्या, कल के लिए घर में आटा चावल कुछ भी नहीं?
3: अरे ना सही फूलकली, मेरी बात तो सुनो। तुमने जो वो 200 रुपए एक सामान लाने के लिए दिए थे ना?
4: हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का?
3: अरे फो, मेरी पूरी बात तो सुनो फूलकली।
4: अरे क्या खाक सुनो तुम्हारी बात, फिर कटवाया है जेब?
3: अरे नहीं फूलकली नहीं, आज मैं कुछ खो कर नहीं कुछ पा कर लौटा हूँ।
4: अरे क्या मतलब, कुछ साफ साफ तो बोलो।
3: अरे आज मुझे बड़ी कीमती चीज हाथ लगी है, ये लो देखो।
4: अरे ये तो सोने का कंगन है।
3: हाँ।
4: और सुनो वो दूसरा कहाँ है?
3: एक ही है,
5: किसी से कहना नहीं भूल कली।
4: अच्छा?
5: रास्ते में पड़ा मिला
4: है। लेकिन सोना मिलना तो शुभ नहीं होता है। सुनो इसमें से कुछ हिस्सा दान करना।
3: अरे देखो फूलकली, इसमें से कुछ हिस्सा तो मैं पहले ही दान कराया हूँ।
4: अच्छा,
3: अब तुम इसमें से चुपचाप अपना मंगल सूत्र बनवा लो।
4: अच्छा।
3: और फिर मुझे कभी ताना मत मारना कि इतने साल शादी के हो गए और मंगल सूत्र नहीं बनवाया।
4: हाय मैं सब समझती हूँ जी। सुनो चलो अभी अभी अपन बाजार चलते हैं। और सुनो वो जो सब सामान तुम्हें लिखवाया था ना वो सब ले।
3: लेकिन वो 200 रुपए जो तुमने सामान लाने के लिए दिए थे ना?
4: हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का? मैं तो इस कंगन की खुशी में सब भूल ही गई।
3: हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। वो तुम कह रही थी ना कि मिले हुए सोने का कुछ हिस्सा दान कर देना। हाँ। चाहिए तो मैं दान कराया वो रुपए।
4: पूरे 200 रुपए?
3: हाँ फूलकली, पूरे 200 रुपए और साथ में अपनी घड़ी और अंगूठी।

0: भी दे आया।
1: हे भगवान, अरे वो कैसे?
0: बात ये है पोलकली कि जब मुझे ये कंगन मिला ना, तो दो लोगों ने मुझे उठाते देख लिया।
1: अच्छा,
0: इसलिए उनका हिस्सा छोड़ना पड़ा।
1: हाय राम, तुमने ये क्या किया?
0: क्या हुआ?
1: अरे वो तो मेरी माँ की निशानी थी और तुमने मिटा दी। आए आए, उनकी आखिरी निशानी।
0: अरे उनकी आखिरी निशानी तो तुम हो पोलकली। फिक्र मत करो, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये कंगन कम वजनी नहीं है। मैंने बस सोच समझ कर सौदा किया है। चल चल चल चल, जल्दी तैयार हो जा। अच्छा, तुम अपनी पसंद का मंगलसूत्र बनवाना। देखो जल्दी से आ, जल्दी से, देर नहीं कर। इधर निकला फूल गली, इधर निकला। बैठो बैठो। नमस्कार सेठ जी।
2: नमस्कार।
0: हम ये कंगन लाए हैं, इसे देखकर ये बताइए कि इसमें सुरना कितना है।
1: ठीक है, कल तक मैं मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद
0: करूं। पसंद करो, पसंद करो। देखो देखो देखो,
2: ये कंगन आपके पास कहाँ से आया?
0: जी, कहीं से नहीं, ये तो हमारा है। क्या बोल गली?
1: हाँ सेठ जी, ये तो हमारा है, हमारा
0: जी।
2: मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये कंगन किसका है।
0: फिर क्या पूछ रहे हैं?
2: मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कंगन आप लोगों के पास कहाँ से आया।
0: देखिए,
2: क्योंकि ये कंगन सोने का नहीं है
0: जी। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? जरा ठीक से देखिए।
1: ठीक से
2: क्या? ठीक से देखें भाई, हमारा तो ये रोज का काम है। दिन भर में न जाने कितना सोना चांदी बेचते खरीदते रहते हैं।
1: तो है,
2: इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है।
0: ये क्या कर रहे हैं आप?
2: इसकी कीमत मुश्किल से 2 रुपए की भी नहीं। आपको किसी ने ठग लिया है।
0: क्या कर रहे हैं
2: आप? कहीं उस गिरोह के चक्कर में तो नहीं आ गए
0: जो
2: इस सड़क पर नकली सोने का कंगन डाल देते हैं, फिर उठाने वाले से अपना हिस्सा मांग कर ठगते हैं?
1: ठगे गए ना, अरे पहले जेब कटवाए आए और अब लेकर के ये नकली कंगन आ गए।
0: बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया था उन बदमाशों ने। अरे मैं लूट गया रे, वो शैतान मुझे लूट कर ले गया रे। अरे मैं बर्बाद हो गया भूल गली।
3: अभी आपने ब्रिज मोहन की लिखी हास्य नाटिका सुनी कंगन। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये हास्य नाटिका आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाज सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से। आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा के ही थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म फाइटर से, आवाज़ें विशाल शेखर, शिल्पा राव और मेलोडी मौलिक थी। गीत के बोल कुमार, मेलोडी और विशाल ददलानी के थे। संगीत विशाल और शेखर का था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज श्रेया घोषाल की थी, गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी

0: का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
0: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
1: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
3: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया

0: जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
3: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित

0: इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म गदर 2 से, आवाज़ें विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आर्टिकल 15 से, आवाज़ें यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की थी। गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत पीयूष शंकर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लूडो से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से, आवाज़ें सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचिन जिगर का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के बाद।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संग।

आज एक ऐसी नायिका की दास्तां लेकर आई है आपकी ये रेडियो सखी, जिसके चेहरे में न जाने क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

दोस्तों बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणाघाट यानी पश्चिम बंगाल में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है ना।

अभिनेत्री राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका हैं तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

तो बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे।

सन 1973 में राखी ने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार से प्यार रचा लिया। आज उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

नया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के छाया गीत में गुलजार के अशार और उन्हीं के नगमे। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के तागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है, एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई, एक एक सांस को खोलकर अपने तन पर लिपटाता जाता है, अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा।

एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हूं तन्हाई भी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, कितनी सूंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी, और खामोशी का हासिल भी, एक लंबी सी खामोशी है, उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी।

न आने की आहट न जाने की टोह मिलती है, कब आते हो कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है, कब आते हो कब जाते हो। बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठकर मुझको ही देखती रहती हैं, कब आते हो कब जाते हो। दिन में कितनी कितनी बार मुझको तुम याद आते हो।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए।

दिल में ऐसे ठहर गए हैं गम, जैसे जंगल में शाम के साए, जाते जाते सहम के रुक जाएं, मुड़ के देखें उदास राहों पर, कैसे बुझते हुए उजालों में दूर तक धूल

रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है। खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रूस सा रेशम भी नहीं। चांद की चिकनी डली है कि घुल जाती है, और सन्नाटों की एक धूल उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिज्र की रातों में ये देखो तो क्या होता है।

बस एक ही सुर में, एक ही लय पे सुबह से देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं तमाम मौसम, टपक रहा है पलक पलक, रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक क्षय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लुभान चल रहा है।

0: इजाजत पंचम का संगीत।
1: चुप सी लगी।
0: फिल्म सन्नाटा, संगीत हेमंत कुमार का। फिल्म खुशबू, संगीत पंचम का।
2: अब के सावन बरसे।
0: फिल्म किनारा, संगीत पंचम। फिल्म लीला, संगीत जगजीत सिंह। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का विविधा कार्यक्रम बहुरंगी है। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा है, फिल्मों का रंग चढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज, लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे।
0: और स्मृति शेष में नमन गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी

तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था।

0: दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, सूरज को है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकीजों में फिल्म रुकवाकर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी, इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात करता रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी, भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा, इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो संत एकनाथ के जीवन पर एक फिल्म बना रहे थे महात्मा। लेकिन अंग्रेज सरकार को ये बर्दाश्त न हुआ क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी से जुड़ रहा था। दबाव डाला गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा तभी इसे रिलीज करने दिया जाएगा, और तब जाकर ये फिल्म धर्मात्मा के नाम से रिलीज हुई। सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जन्मभूमि, ये भी आजादी की बात करती थी। सन 1938 में महबूब खान ने फिल्म बनाई वतन, इस फिल्म में भी संकेतों में आजादी की बात कही गई थी। सन 1940 में आई फिल्म बंधन, इस फिल्म में ये गाना आजादी की अलख जगा रहा था।
2: चल चल रे नौजवान,
3: चलो संग चले हम,
2: चल चल रे नौजवान,
3: चलो संग चले हम,
1: ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। सन 1941 में सोहराब मोदी ने बनाई फिल्म सिकंदर, जिसमें ये देशभक्ति गीत था।

इसी तरह सन 1944 में आई फिल्म पहले आप में तो नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने ये गाना गाया था।

यहाँ मोहम्मद रफी पहली बार नौशाद के लिए गा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि सन 1944 में गुलाम हैदर ने फिल्म भाई में ये गाना बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इसे नसीम अख्तर और जीनत बेगम ने गाया था। बोल शातिर गजनवी के थे।

सन 1946 में आई फिल्म हमजोली। इस फिल्म में नूरजहां ने गाना गाया ये देश हमारा प्यारा प्यारा। ये गाना अंजुम पीलीभीती ने लिखा था और संगीतकार थे हफीज खान।

ये साफ है कि सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि उनके गाने भी आजादी की बात कर रहे थे, देशभक्ति का जज्बा जगा रहे थे, देश के प्रति गौरव का एहसास करवा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुर्लभ गाने की। सन 1946 में एक फिल्म आई थी सोना चांदी। इस फिल्म में एक गाना था प्यारे बापूजी तिरंगे की ले लो कसम, इसे लता मंगेशकर ने गाया था। ध्यान रहे ये वो जमाना था जब लता मंगेशकर फिल्म संसार में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि न्यू थिएटर्स की बिमल रॉय निर्देशित फिल्म हमराही में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर लिखित जन गण मन को शामिल किया गया था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। सन 1947 में आई फिल्म एक कदम में तो पोस्टर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों की लंबी सूची है जो 1947 से पहले भारत में आजादी की अलख जगा रही थीं। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल सन 1946 में 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर का था। बंगाल के अकाल पर बनी इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो देशभक्ति की लौ जगा रहे थे, जैसे ये गाना भूखा है बंगाल।

इसी दौर में आई देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं, जिसके निर्देशक थे पी एल संतोषी। इस फिल्म में एक जोशीला गाना था, हम जाग उठे हैं सोकर। इसे पी एल संतोषी ने खुद लिखा था। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था।

1948 में आई रमेश सहगल के निर्देशन वाली फिल्म शहीद। इस फिल्म में गुलाम हैदर का संगीत था। जरा सोचिए कि गुलाम भारत में कितना महत्वपूर्ण और साहस का काम था, आजादी पर फिल्म बनाना। इस गाने के गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। याद रहे, ये गाना आजादी से पहले रिलीज हुआ था।

0: हमने अब तक जिन फिल्मों का ब्यौरा आपको दिया ये तो सिर्फ एक झलक है। आजादी से पहले हिंदी या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में देश को जगाने और आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम जोर शोर से कर रहा था। कुछ साहसी फिल्मकार ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे ऐसी कहानियां पेश की। आजादी के बाद से अब तक तो ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां कही गई हैं, पर संपादकीय में हमारा फोकस उन फिल्मों पर था जिन्होंने 1947 से पहले हिंदी सिनेमा में आजादी की अलग जगाई। ये था संपादकीय और अब एक लघु फीचर फिल्म दीवार के 51 बरस। दीवार हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस तरह इसकी यात्रा के 51 बरस पूरे हुए। दीवार के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म तूफानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की लेखनी का कमाल थी। ये देखना दिलचस्प है कि दीवार से पहले यश चोपड़ा ने सन 1973 में फिल्म दाग के जरिए अपना बैनर शुरू किया था यशराज फिल्म्स। 1973 में ही प्रोड्यूसर गुलशन राय के लिए उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जोशीला, जिसमें देव आनंद ने काम किया था। गुलशन राय इससे पहले जोशीला और जॉनी मेरा नाम जैसी बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म यात्रा में ये फिल्म और भी मजेदार जगह खड़ी है। सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहलाए, पर इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आईं जैसे अभिमान, सौदागर, नमक हराम वगैरह। जंजीर के बाद दीवार ही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला रूप दोबारा नजर आता है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, एंटी हीरो वाला रास्ता, कड़क आवाज वाले संवाद, फ्लैट चेहरा, किरदार में छिपा गुस्सा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, विजय हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल किरदार बन गया।
2: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
3: हाँ, क्यों?
2: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई रवि की भूमिका में शशि कपूर थे। कैसे? अरे भाई, शशि कपूर तो अमिताभ बच्चन से बड़े थे और सीनियर भी। ये यश चोपड़ा का कन्विक्शन था कि शशि कपूर छोटे भाई की भूमिका में जमेंगे और यही हुआ।
3: इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो, अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए।
0: दीवार में माँ की भूमिका में नजर आई निरूपा राय। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उन्होंने आगे कई फिल्में की और फिल्म इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वैसे फिल्म इतिहास में तो दीवार ने अपना नाम इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि इसे एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट M.A. शेख।
4: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
0: इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस फिल्म का एक अंग्रेजी गाना खुद पंचम यानी आर.डी. बर्मन ने लिखा था और इसे उर्सुला वाज ने गाया था। दीवार में एक गाना ऐसा भी था जिसे फिल्म से हटा दिया गया था। मन्ना डे की आवाज वाला वो गाना था

0: फिल्में ऐसी ही होती हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: ये था लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा की एक रिकॉर्डिंग। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा के एक गुणी गीतकार, उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता। वो बावरा कैसे बने इसकी भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनवाएंगे। गुलशन बावरा 1955 में मुंबई आए और कल्याण जी वीरजी शाह ने उन्हें सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। आगे चलकर उनकी सबसे शानदार जोड़ी बनी पंचम यानी आरडी बर्मन के साथ। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में पेश है गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
3: मैं गुलशन बावरा हूँ, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों के बाद ही बना। ये मेरा दिया हुआ तखल्लुस नहीं है, मैं तो गुलशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मैं सट्टा बाजार कर रहा था फिल्म, तो उसके दो गीत थे। एक गीत था चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, और एक गीत था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो इन दोनों गीतों में टसल चल रही थी। कल्याण जी भाई बोलते थे कि तुम्हें याद होगा अच्छा गीत है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर थे शांति भाई, वो बोलते थे नहीं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अच्छा गीत है। तो उन दोनों में डिस्कशन चल रही थी, तो इतनी देर में मैं पहुंच गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो कल्याण जी बोले, शांति भाई ये इन दोनों का राइटर है, और इसी से पूछ लो कौन सा गीत अच्छा है, क्योंकि तीसरा गीत मैं लिखने गया था आंकड़े का धंधा। तो वो बोले क्या झूठ बोल रहे हो कल्याण जी भाई, क्यों तुम मजाक उड़ाते हो, ये गीतकार तुम्हें कहां से लगता है, ये तो किसी हालत से गीतकार नहीं, ये तो बावला सा लगता है, ये कहां से गीत लिखेगा, और इसने ड्रेस भी कोई ऐसी पहनी हुई है, अभी तो इसकी मूछें भी नहीं निकली हैं, मैं काफी छोटा था। तो इतनी देर में रविंदर दवे की एंट्री हुई, तो उन्होंने पूछा कि देखो कल्याण जी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस आदमी ने दोनों ये गीत लिखे हैं। तो शांति भाई ने बोला कि अगर ये दोनों गाने इसने लिखे हैं तो फिर मैं बैनर पे सिर्फ इसी का नाम दूंगा, मुझे ये बावरा सा लगता है, तो इसका नाम आज से मैं रखता हूँ गुलशन बावरा, और तब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। देखिये मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव किया है तो क्वालिटी को किया है, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। मैंने 44 साल की अपने फिल्म कैरियर में मेरे आज तक 240 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और आप शायद आज के दिनों में गीतकारों को देखिए, एक गीतकार ने एक साल में 300 गाने उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, और मेरा 40 साल के, क्योंकि मैंने क्वालिटी में बिलीव किया है, इसीलिए मुझे उन 240 गानों में उतना रुतबा मिला है, लोगों को शायद 5000 गाने लिखने के बाद भी ना मिला हो। देखिए जब मैं बचपन में ही थोड़े थोड़े भजन लिखने लग गया था, तो मुझे फीलिंग हुई थी कि मैं गीत लिखूंगा, और जब मैं कॉलेज में आया तो इश्क में टक्का होने लगा, तो फिर मैंने इश्किया गीत लिखने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद मुझे फिर पूरा यकीन होने लग गया कि नाउ आई एम फिट फॉर राइटिंग फॉर फिल्म्स। तो अब मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, और भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और उसने मुझे बॉम्बे में एक नौकरी दे दी। मुझे देश से सबसे ज्यादा इश्क है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर लोग सूरज की पहली किरण से नहाकर प्रीत की पूजा करते हैं। ये मेरा देश महान है, ये संगीत का खजाना है देश, मुझे देश, इस देश से बहुत प्रेम है, इसलिए ये गाना मेरे दिल से निकला हुआ है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही।

स्मृति शेष स्मृति शेष में आज सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका एस जानकी को। 11 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हिंदी फिल्मों के कद्रदान एस जानकी को कुछ गिने चुने गानों से ही जानते थे। सन 1985 में आई थी अनिल कपूर और अमृता सिंह के अभिनय वाली फिल्म साहेब, जिसमें एस जानकी और बप्पी लहरी ने

बस यही गाना हिंदी जगत में ज्यादातर एस जानकी की पहचान था। हालांकि उन्होंने इसी बरस यानी सन 1985 में फिल्म सुर संगम में ये भजन गाया था।

एस जानकी ने फिल्म मर्द के लिए ये गाना गाया। एस जानकी को उनके केवल हिंदी गानों से आंकना ठीक नहीं होगा। उन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता था। एस जानकी का पूरा नाम था सिस्तला जानकी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला में हुआ था। बचपन से ही जानकी को रेडियो सुनने का शौक लग गया था। वो लता मंगेशकर के गाने बड़े चाव से सुनती थीं। लता मंगेशकर उनकी प्रेरणा, उनकी आदर्श और गुरु रहीं। इसके बावजूद एस जानकी के गाने की शैली लता से एकदम अलग थी। जानकी का बचपन सिरसिला में बीता, जहां उनके एक रिश्तेदार थिएटर किया करते थे। इंटरवल में वो जानकी को लता मंगेशकर के गाने गाकर जनता को जोड़े रखने को कहते थे। ऐसे ही एक शो में तमिल फिल्मकार बी आर पंथलु और संगीतकार टी जी लिंगप्पा ने उन्हें सुना और चेन्नई आने को कहा। इस तरह सन 1957 में तमिल फिल्म विधियन वेलायत्तू में उनका पहला गाना आया। पहले ही साल एस जानकी ने 6 भाषाओं में गाने गाए। इलैया राजा की पहली फिल्म अन्नाकिली के लिए जानकी ने 3 गाने गाए थे। ये इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने जानकी को दक्षिण भारत की छोटी की गायिका बना दिया।

एस जानकी ने तकरीबन 6 दशक तक फिल्मों में गाने गाए और संगीतकारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया, जैसे टी चलपति राव, एम डी पार्थसारथी, जी रामानाथन, एम बी श्रीनिवासन, के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथन वगैरह। उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 भाषाओं में गीत गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, तुड़ु, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला गीत शामिल हैं। के विश्वनाथ की फिल्मों में इलैया राजा के संगीत निर्देशन में उनके गाए गाने आज भी दक्षिण भारतीय दर्शकों के दिलों की

हिंदी में एस जानकी के कुछ गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना। फिल्म आखिरी रास्ता का ये गाना। नक नक गो।

एस जानकी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक मौजूद हैं जो उन्हें जानकी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।

वो डबल रोल था। जब गजनी का हिंदी रीमेक बना तो उन्होंने वही भूमिका निभाई, गजनी धर्मात्मा की खूंखार भूमिका। कन्नड़ में उन्होंने पैरोडी फिल्म में काम किया, मलयालम में चाइना टाउन, बांग्ला में हीरो 420 और भोजपुरी में क्रैक फाइटर। प्रदीप रावत की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी आमिर खान अभिनीत सरफरोश, जिसमें वो सुल्तान की भूमिका में थे। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म लगान में उन्होंने तेज गेंदबाज देवा सिंह सोधी का शानदार किरदार निभाया था। विनम्र नमन। स्मृति शेष। ये थी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई केंद्र में किया गया है।

5 अगस्त को हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 बरस के थे। प्रदीप रावत ने मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया और वो खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत ने सबसे पहले सन 1988 में बी.आर. चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में काम किया था। यहां उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले तेलुगु फिल्म सई के जरिए कदम रखा था। तमिल सिनेमा में उनका सफर फिल्म गजनी से शुरू हुआ और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया।

0: ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। आप जानते हैं कि हर महीने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती को हम विविधा के अंतर्गत आपको जरूर सुनाते हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस महीने 18 को गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन। गुलजार साहब अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, अपने प्रतीकों की वजह से बड़े विशिष्ट हैं। एक तरफ उन्हें एक बेहतरीन लेखक के तौर पर जाना जाना जरूरी है, जहां आती हैं उनकी कहानियां। दूसरी तरफ जहां आती हैं उनकी कहानियां, रावी पार जैसी बेमिसाल कहानी को हम भला कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं शायर गुलजार, जिन्होंने बेमिसाल नज़में लिखी और कुछ यादगार त्रिवेणियां भी लिखी। आप जानते होंगे कि त्रिवेणियां गुलजार की ऐसी कविताएं हैं जिनमें केवल 3 लाइनें होती हैं। उन्होंने त्रिवेणियों की जो प्रेरणा ली वो जापान के हाइकू से ली है, लेकिन त्रिवेणी की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा ही हैरत में डालती है। त्रिवेणी के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब ये फॉर्म बनाई थी तो पता नहीं था कि ये किस संगम तक पहुंचेगी। त्रिवेणी नाम इसलिए दिया था कि पहले 2 मिसरे गंगा जमुना की तरह मिलते हैं और एक ख्याल एक शेर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं के नीचे एक और नदी है सरस्वती, जो गुप्त है, नजर नहीं आती। त्रिवेणी का काम सरस्वती को दिखाना है। तीसरा मिसरा कहीं पहले 2 मिसरों में गुमा हुआ है, छिपा हुआ है, गुप्त है। तो गुलजार की कुछ त्रिवेणियां, एक त्रिवेणी में गुलजार लिखते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। एक और त्रिवेणी, गोले बारूद आग बम नारे, गोले बारूद आग बम नारे, बाजी आतिश की शहर में गर्म है, बंद खोलो कि आज सब बंद है। एक और त्रिवेणी, रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, रात के पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। गुलजार साहब विविध भारती के स्टूडियो में कई बार आए हैं और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम उन्होंने पेश किया था बरसों पहले मास्टर राजू के साथ। जरा अपने खजाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगती है क्या। ये रही, तो चलिए इसे प्ले करते हैं।
1: फौजी भाइयों नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। पहली बार अकेले मिला था, इस बार मेरे साथ एक बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है जिसका नाम है मास्टर राजू। बहुत सी फिल्मों में उसे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में उससे मिले होंगे, लेकिन आज

0: फख्र मुझे हासिल है कि मैं इस बच्चे का आपसे परिचय करा रहा हूँ।
1: लेकिन अंकल, हमारी पहली फिल्म का भी तो नाम परिचय था।
0: जी हाँ, आपको याद है?
1: हाँ, मुझे उसका एक सीन और एक गाना याद है।
0: अच्छा, सीन कौन सा याद है आपको?
1: वो जब जितेंद्र अंकल नहा रहे होते हैं तो मैं उनके कमरे में लंगड़ा भूत बनकर जाता हूँ और कहता हूँ, अंदर कौन है? मैं लंगड़ा भूत हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगा।
0: अच्छा, आपको अभी तक याद है। हाँ। और गाना कौन सा?
1: वो जो हम सब लोग गाते हैं, सारे के सारे।
0: हाँ, तो वो गाना आपने पहली बार स्क्रीन पर गाना गाया था ना?
1: जी हाँ।
0: तो वो गाना हम फौजी भाइयों को सुनाएं?
1: जी हाँ।
0: चलिए वो गाना सुनाते हैं।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: राजू बेटा एक बात बताइए हमें, आप ये जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये आपने सीखी कहाँ से?
1: ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी बच्चों से भी सीखी, लेकिन अंकल एक पाँच मिनट मेरा मतलब दो मिनट
0: में क्या करेंगे?
1: मैंने गलती हो गई मुझसे।
0: क्या?
1: मैंने फौजी भाइयों को नमस्ते करना भूल गया।
0: अरे रे रे रे, तो आप नमस्ते कर लीजिए। चलिए
1: फौजी भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नमस्ते करना भूल गया, इसलिए मैं आपको अभी नमस्ते कहता हूँ।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखी आप बता रहे थे हमें?
1: हाँ, ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी सीखी, बच्चों से भी सीखी।
0: बच्चों से कौन सी?
1: बच्चों में मुझे एक फिल्म अच्छी लगी, वो आशीर्वाद।
0: अच्छा अच्छा, उसमें तो बहुत से बच्चों के गाने भी थे।
1: जी
0: कोई गाना आपको याद है?
1: हाँ, वो दादा मुनि का जो गाना था।
0: दादा मुनि फौजी भाई जानते होंगे, हम अशोक कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि कह के बुलाते हैं। तो दादा मुनि का कौन सा गाना आपको पसंद था?
1: वो जो तालेगांव मालेगांव वाला जो गाना था।
0: हाँ, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। हाँ। तो चलिए रेलगाड़ी पे चले।
1: हाँ,
0: चलिए आइए।
2: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर।

0: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ
1: बस बस बस
2: अंकल स्टेशन आ गया
1: चलिए उतरे
2: हाँ चलिए
1: उतरे आइए चलिए अब कौन से गाने पे उतरेंगे
2: अब
1: गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको हाँ कौन सा सुनाएंगे आप अच्छा ऐसी पिक्चर का गाना सुनाइए जिसमें आपने काम किया हो
2: अच्छा वो गाना मैंने नहीं गाया तो चलेगा
1: हाँ चलेगा लेकिन किसने गाया बता दीजिए
2: वो असरानी अंकल जो गाते बावर्ची में
1: वो कौन सा

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी,
1: नमस्ते।
0: जय हिंद ओ पिताजी,
1: जय हिंद।
0: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
2: अंकल आपको मैथमेटिक्स आता है?
3: मैथमेटिक्स क्यों? एक मिनट जरा, मैं कुछ कुछ फौजी भाइयों को कुछ बताना।
2: अब आप भी भूल करने लगे ना।
3: मेरे भूल हो गई, आपके बारे में कुछ बताना भूल गया।
2: हाँ, फिर चलेगा।
3: फौजी भाइयों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू वो आर्टिस्ट है जिसे इस साल हिंदुस्तान में नेशनल अवार्ड मिला है, बस ये बात बताना भूल गया था। आप क्या पूछ रहे थे?
2: मैं पूछ रहा था आपको मैथमेटिक्स आता है?
3: मैथमेटिक्स क्यों?
2: मेरे पास एक सवाल है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे?
3: क्या?
2: देखिए, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
3: ठीक है ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत पसंद है वो गाना, आप वो गाना सुनाना चाहते हैं हमें है?
2: जी हाँ,
3: तो चलिए सुनाइए।
2: आप बहुत जल्दी समझ गए।

0: लगता है मैथमेटिक्स आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
1: नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आप तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े होगे?
0: नहीं मेरे, हम स्कूल ही नहीं गए, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे?
1: आपको हिस्ट्री पढ़ना है?
0: हाँ मुझे पढ़नी है। आप पढ़ाएंगे?
1: हाँ।
0: कैसे?
1: हम जागृति है ना, जो फिल्म थी उसका हम एक गाने की उंगली पकड़ लेते हैं और बस आप उससे ही हिस्ट्री समझ जाएंगे।
0: अच्छा, उससे आप हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे?
1: हाँ
0: चलिए पढ़ाएंगे। आप शुरू कीजिए।

0: अच्छा रंज, जरा आप अपनी एक्टिंग का नमूना तो दिखाइए फौजी भाइयों को।
1: लेकिन अंकल ये तो रेडियो है।
0: हाँ तो क्या है, रेडियो पे आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखा सकते? अरे आवाज तो उससे तो आप अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जैसे हमें सेट पे दिखाया करते हैं, जो जोक सुनाया करते हैं।
1: अच्छा कौन सा?
0: आप कोई भी जोक जो आपको पसंद हो।
1: अच्छा मैं आपका फेवरेट जोक कहूँ?
0: हाँ सुनाइए।
1: देखिए
0: इस जोक में हम पहले बता दें फौजी भाइयों को कि पहला रोल लसरानी, दूसरा अर्शित सेन और तीसरा
1: किशोर मुखर्जी।
0: हाँ सुनाइए।
1: तो ये तीनों अंकल बैठे रहते हैं, तीनों जन अपना अपना बोलते कि मैं होशियार हूँ मैं होशियार हूँ। तो असरानी अंकल पहले कहते हैं कि मैं जंगल में गया, वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, सिर्फ हाँ सिर्फ सिर्फ एक ही। उस झाड़ के नीचे दो शेर बैठे हुए थे, हाँ सिर्फ दो शेर, और मेरी बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी, सिर्फ एक ही गोली।
0: तो
1: उसके अंदर से उन्होंने कहा, मैंने एक को बुलेट मारी, एक को गोली मारी और एक को आंख मारी, दोनों मर गए।
0: अच्छा,
1: फिर टर्न आई अशित सेन अंकल की। अंकल ने कहा, अरे अरे अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो, मैं जंगल में गया तो वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, वो झाड़ के नीचे एक ही शेर बैठा था। और क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला था तो मैं बहुत जल्दी में निकला और मैं अपनी बंदूक लेने भूल गया। अब मेरे सामने शेर खड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने देखा उनके पीछे की जेब में उनका लाइसेंस था, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया,
0: बंदूक का लाइसेंस।
1: जी हाँ बंदूक का लाइसेंस दिखाया। तो उस शेर को दिखाते ही शेर मर गया।
0: अच्छा, तो लाइसेंस सही मार दिया।
1: जी हाँ, अब किस्टो अंकल की टर्न आई। उन्होंने कहा, अरे जरा घुस भी नहीं है, मेरा सुन, मैं जंगल में गया, भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, सेम भागा, जंगल मेरे आगे मैं जंगल के पीछे, वो जंगल के अंदर हेगी झाड़ था, वो झाड़ के नीचे एक शे शे

0: शेर बता शेर, वो शेर को मैंने बोला, हे शेर, हे शेर, तू जंगल का राजा है, राजा है? तो बोला हाँ हूँ। तेरी सब लोग सेवा करते, तेरी सब लोग सेवा करते? तो बोला हाँ करते हैं। तो तू झड़ी झड़ी का को नहीं पहनता है, तू शर्म के मारे मर गया, मर गया।
1: तीसरे को आपने शर्म से मार दिया।
0: जी हाँ।
1: सुनिए, आप मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं, उतने ही होशियार हैं जितने आप एक्टिंग में होशियार हैं। और आप सेट पे जो कुछ किया करते हैं, एक तो जोक सुनाते हैं, उसके अलावा आप पहेलियां पूछा करते हैं हमसे।
0: जी हाँ।
1: अगर हमसे आप कुछ पहेलियां पूछें तो?
0: जी
1: पूछेंगे या मैं पूछूं आपसे?
0: जो भी कहें।
1: चलिए हम कुछ पहेलियां आपको सुनाते हैं,
0: पूछिए।
1: अगर अच्छी लगे तो उनके जवाब बताइएगा।
0: चलिए।
1: हाँ जी, चलिए।
2: मैं लाल लाल गुजको, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं कौन हूँ?

0: बताओ नारियल।
1: अच्छा एक बात बताइए राजू बेटा, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
2: मैं जब छोटा था तो बहुत सारी फिल्में देखता था।
1: मतलब अब आप बड़े हो गए?
2: नहीं, मैं उस उम्र की बात करता हूँ, इस उम्र से भी छोटा था जब।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो मैं जब छोटा था तो बहुत सी फिल्म देखता था, लेकिन उसमें से मुझे एक फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, वो ब्रह्मचारी।
1: ठीक है, मुझे याद है।
2: उसके अंदर से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो गाना कभी रेडियो पर आता था ना, भले मैं खेलता था, लेसन करता था, कुछ भी करता था ना, और अगर वो गाना रेडियो पर आया बस मैं नाचने लग जाता था।
1: अच्छा, शमी अंकल की तरह। अच्छा, अगर वो गाना मैं अभी लगाऊं तो आप नाचेंगे?
2: हाँ नाचूंगा तो सही, लेकिन फायदा नहीं है।
1: क्यों?
2: कोई देखने वाला तो नहीं।
1: अरे फौजी भाई भी देखना खुशी से नाचने लगेंगे। मैं लगाता हूँ गाना। चलिए।

0: में हिंद के लंबी सितारी।
1: राजू बेटा एक बात जो हम भूल गए।
2: देखिए अंकल आप फिर से भूल करने लगे।
1: नहीं नहीं भूले मतलब उस तरह की भूल नहीं है, भूल ना जाए इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पिक्चर में आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस पिक्चर का कोई गाना तो सुनाइए।
2: अरे हाँ
1: आपको याद है कोई गाना उस पिक्चर का?
2: हाँ उसमें से एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो आज से पहले आज से ज्यादा।
1: आपको याद है गाना? याद है
2: हाँ।
1: तर्ज भी याद है?
2: हाँ और वैसे मैं आज खुश भी हूँ।
1: अच्छा तो चलिए सुनाइए मैं कैसे गाना।
2: आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा।

0: राजवीर है, अब आगे चले यहाँ से।
1: लेकिन अंकल
0: जी,
1: आपने एक भूल की।
0: फिर मैंने की? आपने की
1: नहीं की आपने, कह मैं रहा हूँ कि जिस फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम तो आपने बताना ही भूल गया।
0: आई एम सॉरी।
1: खैर मैं बता देता हूँ, उस फिल्म का नाम है चितचोर।
0: अच्छा, उसके बाद एक और भूल से आप बच के रहिए कि वक्त हो रहा है, हमें चलना है और फौजी भाइयों को नमस्ते कह के उनसे इजाजत लेनी।
1: नहीं अंकल, एक गाना।
0: और गाना कौन सा?
1: वो मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिए।
0: नहीं पर बता तो दीजिए।
1: नहीं, सस्पेंस।
0: अच्छा, गाने में सस्पेंस वाले।
1: चलिए
0: चलिए सुनाइए।

ये थी मास्टर राजू और गुलजार साहब की एक संयुक्त प्रस्तुति जो बरसों पहले विविध भारती पर हुई और अपने संग्रहालय से हमने निकाल कर इसे आपके लिए पेश किया। विविधा कार्यक्रम में आज हमने दो विशेष प्रस्तुतियां आपकी नजर की, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक और इसके साथ ही गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। आज का विविधा कार्यक्रम इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। अब यूनुस खान को दें इजाजत। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर सुनिए विविधा।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: नदिया के पार फिल्म में आपने सुना ये आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता और साथियों की थी। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहत नामा।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
0: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था, हिमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: ये चौपाइयां आप सुन रहे थे। फिल्म थी दुल्हन वही, जो पिया मन भाई, हेमलता और साथियों की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अखियों के झरोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का था। श्रोताओं, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए हेमलता के गाए चंद नगमे। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओ, आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने फेसबुक पर जो आज हमने इबारत पोस्ट की है उसे पढ़ा है और उस हिसाब से अपने गीतों के जो उनके सिलेक्शन है उसको भी बताया है हमें। वैसे आज जो बातें हमने की हैं उसके मातहत बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद के नगमे हमें भेजे हैं। सावन का जो ये उजाला होता है श्रोताओं, यानी दिन की अगर बात करें तो जितना खूबसूरत होता है रातें भी उतनी ही मनभावन होती हैं, जो दिन की भागदौड़ से दूर थकन के एहसास को दूर भगाती हैं, अपने आगोश में हमें ले लेती हैं। कभी गीत कभी गजल सुकून देते हैं ऐसी रातों में, कभी चांद सितारे हमसे बातें करते हैं, फूलों कलियों की खुशबू के साथ साथ भीगे सावन की रातों में कुछ खास यादें आपके मन में दस्तक देती होंगी। बरसात की कोई यादगार रात, जब जिंदगी के किसी सफर में कोई अजनबी बना आपका हम सफर और आपकी यादों में हमेशा के लिए बस गया रजनीगंधा के फूलों की महक की तरह। आज सुरीला सफर कार्यक्रम में सावन की बरसती रातें, कुछ गीत कुछ यादें हैं हमारी हम सफर। और अब आपसे बता दें जो इबारत हमने पोस्ट की है ये कुछ इस तरह से है। तुम्हें याद है वो बारिशों की रात, जब सावन के गीत की तरह समा सुहाना था, एक राह के हम दो अजनबी थे, हवाओं ने जब आपके रुख से पर्दा हटाया तो लगा जैसे बैरागी भंवरा नरगिस के फूलों के दामन में आधी रात कोई कविता सुनाता हो और कहता हो तेरा मेरा प्यार नया है। आज याद आई वही बरसात की रात, जब जिंदगी में जीने की तमन्ना जाग उठी थी, एक अनदेखी निगाह से दिल ने कहा था ऐसे तो न देखो। उस रात बादलों में कयामत के काजल थे, हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे, शायद प्यार हुआ था इकरार हुआ था, छतरी तानी और दोनों साथ चल दिए, दिल ने सच ही तो कहा था कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं और खोजिए उन शब्दों को जो हैं आज की इबारत में शामिल। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अनजाना के ये कौन से दो कलाकार हैं श्रोताओ जो भीगना तो चाहते हैं लेकिन भीगने से बच रहे हैं। उनके नाम आपको बताने हैं। और ऐसी बारिशों में क्या कोई कभी ऐसा दिखा आपको जो बिना छतरी के भीग रहा था और आपने अपनी छतरी के सहारे उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश से जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो प्रकृति के श्रृंगार और मानव मन के अंतर द्वंद और प्रिय से मिलन का मनोहारी रूप का गाढ़ा चित्रण है। सावन में बारिश की रात में हवा से चेहरे के पर्दे का हटना प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ये संयोग चमत्कार है जो सत्य सौंदर्य और प्रेम के प्रकटीकरण का रूप लिए है। दो अजनबी का मिलना क्षण भंगुरता में शाश्वतता का अमर और अनंत प्रतीक होने के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस के अंकुरित होने का एहसास दे रहा है। रिमझिम रिमझिम बारिश और सुहाना मौसम प्रेम भाव को जगाने वाला मुख्य उद्दीपन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनजान अजनबी संग अनजाने में अनकही बातें और अनबूझी आशाओं आकांक्षाओं का आकलन करती इबारत है और

आशिकों के आका बनी सावन की बरसती जो बूंदे हैं आकाश में से मानो बौछार कर रही हैं बूंदे और अपने आश्रित आशिकों को अनुरागी आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ एक शब्द हमारे कुछ श्रोताओं ने सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रात समा पर्दा प्यार तमन्ना देखो कयामत इकरार दामन, ये सारे शब्द हैं इसमें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे जमाना लाख करे सितम हाय कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। और कुछ गीत इन्होंने भी सुझाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी तेरे दामन न छोड़ेंगे हम, प्यार हुआ इकरार हुआ और ए नरगिस मस्ताना, ये सारी गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की वो रात शायद इसलिए याद रह गई क्योंकि उसमें मौसम से ज्यादा कुछ और भी बरसा था। दो अजनबी थे, एक राह थी, थोड़ी सी झिझक और कुछ अनकही बातें, फिर एक निगाह मिली और लगा जैसे दिल ने सब कह दिया। छतरी के नीचे साथ साथ चलते हुए शायद प्यार ने चुपके से दस्तक दी थी। कुछ पल इतने सादे होते हैं कि उम्र भर की खूबसूरत याद बन जाते हैं। तो यही याद हमने आपसे पूछी है श्रोताओं कि क्या कोई कभी ऐसा मिला जो बारिश में बिना छतरी के भीग रहा था और आपने उसे अपनी छतरी के सहारे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया। ये कौन से कलाकार

क्या देखा है और क्या आप ये कलाकार जो गा रहे थे उन्हें पहचानते हैं तो आप हमें लिख भेजें। और ये फिल्म क्या आपने देखी है, घर घर की कहानी फिल्म का ये गीत था, आवाज सदाबहार गायक किशोर कुमार की थी। हमारी शोधा ने लिखा है कि आज की इबारत बरसात में तुमसे मिले हम, हमसे मिले तुम की तरफ इशारा कर रही है। बरसात सिर्फ तन ही नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगोती है। बारिश अपने पूरे शबाब पर हो और किसी शेड के नीचे दो अजनबियों का बारिश रुकने तक धीरे धीरे संकोच छोड़कर बातों का सिलसिला शुरू करना या किसी से मिले लिफ्ट के बाद पता चलना कि दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों ही परिस्थितियों में ये महसूस होता है कि हम दोनों अब अजनबी नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं, तब दिल इस बरसात को शुक्रिया स्वरूप कह उठता है। जुग जुग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओं कि वाकई हम किसी शेड के नीचे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये बारिश अब थम जाएगी, तब थम जाएगी, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई आपका साथी बना क्या जो आज तक आपको याद है, तो बारिश की ये रातें जिनकी यादों को आज आप इस कार्यक्रम में ताजा कर सकते हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं में से एक श्रोता ने और लिखा है कि वो बारिशों की रात थी और सावन खिड़कियों पर कोई धीमा सा खत लिख रहा था। हम दो अजनबी थे एक ही राह पर, मगर जाने क्यों हवा बार बार तुम्हारा रुख मेरी तरफ मोड़ देती थी। बादलों के काजल में आधी रात डूबी थी और तुम्हारे चेहरे से जब हवा ने पर्दा हटाया लगा जैसे नरगिस के फूलों के बीच कोई भूली हुई कविता जाग गई हो। छतरी हाथ में थी और इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। वैसे जो सावन की रात होती है उसमें तमाम फूल भी होते हैं। नरगिस के फूल का हमने जिक्र किया है और आपको यादें तो ताजा करनी ही हैं, साथ ही नरगिस का जो फूल होता है क्या आपने उसे देखा है, कितने रंग का होता है श्रोताओं, यह आपको बताना है। और नरगिस के फूल को और क्या कहते हैं, यानी और क्या नाम है।

ये गीत क्या आपके दिल के करीब है श्रोताओ? ये दिल क्या आपको इस गीत को सुनने के लिए बार बार मजबूर करता है? जी हाँ, ये गीत अपने जमाने का बड़ा ही खूबसूरत नगमा बन पड़ा था श्रोताओ, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जुबान पर था। आपने इस फिल्म

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में, बस पकड़ा हमने, खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती है कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफेद रंग का होता है, लेकिन इसकी किस्मों में नारंगी, क्रीम, गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डेफोडिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर रिमझिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गई तो वीडियो करने लगी, बाद में कमल रूठा उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले। चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ। बप्पा, इन्होंने बप्पा को भी याद किया है, यानी गणपति बप्पा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था, बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी, मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया, मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद है। जी हाँ, विविध भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। खूबसूरत हसीना कौन है?

वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओं, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, धरती भी झूमती है, गाती है बरखा रानी जरा जम के बरसो। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद आया, एक बार मेरी एक कलीग जिससे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोरावस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे, मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था। बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अल नीनो ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम, सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं, पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं। तो आप इंतजार करें, बारिश तो आएगी।

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोताओ, न सिर्फ हम सफर यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताजा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफर होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गजल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफर है, वो कौन सा हम सफर है श्रोताओ, जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रॉल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुंह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन

बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे नाम, उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इंतजार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारे श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं। लिफ्ट में जब आप जाते हैं, कोई ऐसी रात जो आपको याद रह गई हो,

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, बोली आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की बारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम यही कहेंगे रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहली नजर का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है और सावन महीने की हर बूंदें उसकी यादें ताजा करती हैं और भीगे हुए। और इन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं आगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है और ये खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपसे पूछा था वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे

अरुण गोविल और ज़ीना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहां बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों के संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

नंदा और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में श्रोता? अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी, चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना यानी सुरमई यादों, तरानों का नया कारवां और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे।

एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूं और वहां से प्रोग्राम सुन रही हूं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वाद्य बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में। जगह वृंदावन गए, वहाँ किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो।

अच्छा था। बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे थे। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: पहले।
1: नहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

पेश खिदमत है मन चाहेगी तो सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं, थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर की सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरू सुल्तान परिकर लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयानंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलोदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इद्रीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश श्यामला, अश्विन और आनंद मनवित दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के, का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा, और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनतार अकोले से, राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

ओपिन अय्यर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। एसएच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहां से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहां का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारस मणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं। सचिन नीलखन, आयुष पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देवल गांव के श्रोता हैं मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य। अब

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल धानवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश, शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा। और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे। हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसा बेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे। और इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद ने।

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहदीली खां के बोलों के सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है, और शाहिद दीपक और रुषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से। गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार, और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि, चित्रंजन, सरोज, रितिका, स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओ कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए। भेजते हैं इसी तरह से अपने पत्र, और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अब इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
1: अरे भाई कृपण चंद, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
2: आओ भाई डॉक्टर।
1: अरे जल्दी आओ ना।
2: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
1: क्यों?
2: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी सर फिनार गई।
1: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
2: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता है तुम टूट कर रहा हूँ।
1: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
2: मजाक ना करो दोस्त, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह को आ रहा है। आ, आ, आ, आ, आ, आ, कितना चाहती थी मुझे।
1: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
2: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
1: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
2: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती है, कोई कोई सी

0: कान सा कोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
0: अरे नहीं तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती।
1: अरे
0: भाई उतार चल।
1: हाँ
0: उतार चल।
1: हाँ कृपा
0: भाई, तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
1: सो तो
0: बोलो ना।
1: हाँ
0: तुम ऐसा करो, तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
1: देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
0: बताओ बताओ जल्दी बताओ।
1: बताऊं?
0: आप बताओ ना।
1: बताऊं?
0: अब बताओ। अरे वाह।
1: देखो भाई, तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां दिलवा दो।
0: जरी के काम की साड़ियां?
1: अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
0: साड़ियां जेवर? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा है उसका।
1: महंगा?
0: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उधार चंद भाई उधार चंद, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
0: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई,
1: हाँ?
0: सारी जेवर पर कमाई,
1: हाँ?
0: समझो उसकी आफत आई।
1: हाँ? तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
0: क्या मतलब?
1: अरे भाई जमाई का मतलब ही नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई।
0: हाँ तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
0: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई, है कोई गारंटी नहीं? अरे भाई तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
0: एक ही बार तो की थी।
1: हाँ एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदास हूँ।
1: हाँ
0: कोई आज मुस्का सोचो।
1: नहीं नहीं भाई, हाँ। मैं कुछ नहीं जानता, बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
0: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
1: अच्छा?
0: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है मैं दुलारी को भिजवा
0: देता हूँ। देखो भेजना जरूर।
1: हाँ भेजूंगा।
0: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी जेवर शादी, आया आया आया आया, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आया
2: चाचा जी।
0: हाँ दिलाड़ी तुम आ गई।
2: क्या बात है मुझे बताइए। चाचा जी मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
0: अरे वाह वाह, शादी नहीं बर्बादी है। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: लेकिन चाचा जी,
0: उसने इसी बड़ा दिया।
2: चाचा जी
0: क्यों कहूँगा,
2: रूपा किसी को चाहती
0: है। किसी का नाम है जी?
2: उसे पति चाहिए।
0: मैं कुछ नहीं जानता।
2: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर दीजिए। रूपा देखा दुलारे, चिंता की कोई बात नहीं रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारे, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद के आगे तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चले।
0: प्यार हो गया, शादी करेंगे, दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा कर दूं? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है, मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
2: चाचा जी, चाचा जी गजब हो गया। रूपा
0: क्या हुआ मेरी बेटी को?
2: बदकिस्मती।
0: अरे दुलारी बोलो तो कुछ।
2: दुर्भाग्य।
0: अरे बताते क्यों नहीं, क्या हुआ?
2: रूपा बहन,
0: क्या हुआ उसे?
2: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
0: अच्छा, तो
2: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मेरे लिए एक ही रास्ता है,
0: क्या, क्या?
2: मौत।
0: और वो नीचे कूद गई।
2: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
0: क्यों?

0: बिस्तर पर पड़ी। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
1: गई।
0: चली जाइए, रूपा लाइन क्लियर है, आ जा।
2: क्या कहा पिताजी ने?
0: घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
2: डॉक्टर?
0: हाँ,
2: अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
0: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा।
2: अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा।
0: चाचा जी आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी क्या बात है?
2: चाचा जी रूपा पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
3: मैं डॉक्टर बोगसचंद।
1: हाँ बोगसचंद, बिल्कुल बोगस।
3: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
4: और मैं हूँ कविराज मूढ़ानंद, नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता।
5: मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहू तो मुर्दे में जान डाल लू और चाहू तो जिंदा को।
1: अरे भाई मैंने कहा अपने मुमिया मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
3: क्या तकलीफ है आपको?
4: मुझे अपनी नाड़ी दिखाइए।
5: अरे नहीं, मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
1: सामान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया? नॉनसेंस,
4: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता सकते।
5: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई? मरीजा कहाँ है?
1: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। दिलाजी बेटी
2: जी, चलिए
1: इन लोगों को अंदर ले
2: जाइए। आइए
1: आइए। वो आ गया। क्या हाल है मेरी बेटी का?
3: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
1: गुड गुड।
3: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
1: क्या बातें हो जी? पापा मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
4: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
5: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगसचंद?
3: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवी साहब।
4: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
1: अच्छा,
4: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
1: अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। बेटी को देख लो।
3: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
4: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
5: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
3: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
4: अरे क्यों मिथ्या खतन करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
3: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
4: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
5: अरे भाई
4: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
5: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाई जान। हाथ में शफा होनी चाहिए, शफा मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
4: अच्छा,
5: अब धोबी चंगा हो गया।
3: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
5: जानवरों का डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
3: गधों का इलाज करता हूँ।
4: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
1: तबियत बेटी की तबियत बिगड़ती जा रही है। अरे आप लोगों ने क्या

0: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा, साथ से या साथ रोग भी कभी आज मूलानंद के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता।
1: तो जल्दी कोई इलाज
0: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा
2: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सर जी। हाँ, कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
0: और अपनी भी तो कहा सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
3: हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जाहिर और ठग हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक।
3: अरे खानदानी हकीम का जनाब, सिर्फ मैं हूँ खानदानी हकीम जी। हाँ, ये देखिए, ये लीजिए एक पुणिया सौंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
1: मगर हकीम साहब, हाँ जी, मैं नहीं, मेरी बेटी है।
2: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया
0: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
2: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को
0: देखने जाते
1: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। अब हम मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
2: और
1: के लिए दवा। बिना माकूलों से पाला पड़ा।
4: चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने?
1: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
4: मैं तो पहले कह रही थी,
1: लगता है मेरी रूपा का मर्द कोई दूर कर नहीं पाएगा।
4: चाचा जी, आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
1: बेटी तू किसे लाएगी?
4: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
1: अरे तो जाना, जा मेरा मुंह क्या ताक रही है, जाकर जल्दी से बुला ला। और देख बेटी, बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में। हाँ,
4: मैं सब पक्का कर रही हूँ।
1: हाँ, समझ आ
4: रहा हूँ। अभी गई और अभी आई।
1: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी लाना। रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गएगा। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
5: अरे भाई कुमार चांद, डॉक्टर बोगस चंद ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
1: हाँ भाई, बेहोश पड़ी है।
5: अरे भाई, डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
1: क्या करूं, बताओ बताओ, तुम्हें बताओ ना।
5: उसके कान में धीरे से कहो,
1: क्या, क्या
5: बेटी, देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ और जेवर लाया हूँ। बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
1: अपनी बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
5: अरे भाई, मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो,
1: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं? बोलो करते हो नहीं?
5: हाँ, तो हूँ।
1: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
5: हाँ, बोलो।
1: मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
5: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है, जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
5: ठीक है, अब मुझे क्या?
1: हाँ हाँ, जाओ जाओ दूर कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो, देखो रूपा का क्या हाल है।
4: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
6: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना?
4: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइया हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
6: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर
4: दी तो। रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें।
6: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करूंगा।
1: अरे बेटी, दुलारी दुलारी रूपा की हालत
4: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: अरे ये डॉक्टर है
4: क्यों?
1: एकदम छोकरा
2: श्रीमान जी,
1: ये क्या इलाज कर

0: आप मुझे मामूली डॉक्टर न समझें।
1: अच्छा,
0: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी?
0: ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
1: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
0: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
1: अच्छा
0: जी हाँ।
2: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, चल कर उसे देख लीजिए।
0: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
2: मगर वो तो बेहोश है।
0: जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है। जाकर मरीजा को ले आओ।
2: अभी लाई, अभी लाई।
1: कमाल है, वाह वाह वाह वाह। आप तो डॉक्टर नहीं, जादूगर है।
0: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
1: मगर डॉक्टर साहब
0: जी,
1: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया, इतनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल ठीक से चल नहीं पाती।
0: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए, मरीज आ गई।
0: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने ही बातें करो।
2: मगर चाचा जी, ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
1: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
0: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: चाचा जी, आइए हम लोग उस कोने में चलें, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
1: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर, जाओ। देखो
0: मैं आ गया।
2: मेरी प्राण
1: दुलारी,
2: मेरी आंखें,
1: डॉक्टर क्या सर पर रहा है?
2: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
1: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
2: क्या हुआ चाचा जी? रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना?
1: डॉक्टर साहब
0: जी,
1: डॉक्टर साहब, कुछ पता चला?
0: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: जी आप पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन पर ले जा, जान ले जा।
2: अच्छा अच्छा,
0: देखिए दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ
1: जी।
0: अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
1: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
0: जी हाँ
1: जी।
0: मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का भूत
1: है। शादी?
0: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
1: बिल्कुल
0: होना नहीं चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
1: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
2: तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
1: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
0: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
0: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
1: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दें?
0: जी नहीं जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
1: फिर क्या करें बताइए?
0: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
1: नाटक?
0: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
1: आपका मतलब है कि?
0: हाँ हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
1: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
1: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? हाँ बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
0: हाँ, ये समस्या।
1: वही वही ना बात।
2: चाचा साहब, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
0: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
1: हो तो सकता है, लेकिन
2: लेकिन

0: छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
1: देखिए इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
0: डॉक्टर साहब, आप कृपा करके हमारी विनती माननी, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं अभी रूपा को
2: डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
1: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
2: गुड गुड।
1: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
2: सही है, बिल्कुल सही।
1: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
0: रूपा आ गई चाचा जी।
2: बहुत अच्छा बेटी, इतना जवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
0: क्या ये सच है पिताजी?
2: हाँ हाँ पसंद है।
0: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
2: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
0: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
2: अरे सुन तो, अरे सुन तो बिलाजी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है नाटक।
0: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
2: अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं हो ना?
0: नहीं, लेकिन
2: बेटी लाओ तो अपना हाथ रहा। ऐसे हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ।
1: लेकिन वो
2: नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाती दो। ला बेटी हाथ दो। हाँ ए जिनो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
0: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह। अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
2: ये तो ठीक है।
3: जजमान मैं कराऊंगा ब्याह।
2: लेकिन पंडित जी, पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है जजमान है। कहा है ये संसार जो है ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता हैं।
1: तो जजमान, वरवधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
2: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो ठीक है, तुम ठीक है।
3: तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आसपास घेरे लगा लो जो है।
1: मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। समझ लो यजमान, भावरे भी पड़ गई। हाँ सदाशिव भाग्यवती रहो, सदाशिव भाग्यवती रहो। हाँ यजमान, अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है, और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
2: पंडित जी मेरी बात तो।
0: चाचा जी आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना, नाटक पक्का होना चाहिए।
2: पक्का होना चाहिए बिल्कुल, मैं आशीर्वाद देता हूँ।
1: बोली
2: ये जोड़ी चुप चुप जी।
4: यानी कि चट मांगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी, मैं अभी जाकर साड़ियाँ और जेवर।
2: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम।
3: अच्छा अच्छा जी मैं बोले तो अब हमारी दक्षिणा तो मेरे जाए जो है जो
2: आए। कैसी दक्षिणा? शादी तो
0: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी, पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
2: और यहाँ तो सिदारी
1: चलिए। जजमान की
3: आए, ये क्या केवल भीख खाने पैसे जो जो। अरे राम राम, जब जजमान एकदम पक्की शादी कराई है,
1: कम से कम सवा 5 रुपए तो दीजिए।
2: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए, और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा।
3: अरे ना, अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान, मैं जाता हूँ।
1: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रूपा।
2: अरे तुम लोग कहाँ जाओगे भाई?
0: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
2: ये क्या मजाक है? देखा तुमने?

0: अंकल की झोपड़ी हमें बना रही है।
1: अरे इसमें बनाने की क्या बात है, है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दी है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
0: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
1: इलाज नाटक भाई, ये सब क्या चक्कर है यानी कि?
2: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
0: अरे अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे उदार चंद।
1: हाँ भैया कृपण चंद
0: गए।
1: जाने तो क्या हुआ
0: उदार चंद? उदार चंद के बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। उदार चंद ये डॉक्टर था, डॉक्टर। मेरी लड़की को ले भागा, मेरी लड़की को ले भागा। उदार चंद मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। दुलारी से पूछ लो।
1: क्यों दुलारी, क्या बात है?
3: कुछ नहीं पिताजी, रूपा प्रेम बाबू को चाहती है,
1: ठीक है,
3: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं
0: थे,
3: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
0: नाटक
1: भाई कृपण चंद, आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए।
0: भगवान, अरे ये क्या हो गया? मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। आया आया आया, अरे अरे भाई उधार चल।
1: हाँ कृपण चल।
0: अरे तुम लो
1: हो गया।
0: अरे चक्कर, हाँ
1: चक्कर चक्कर।
0: अरे अरे चक्कर, अरे चक्कर।
4: पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तराने नए पुराने।